हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की ये सभा अब प्रारंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच

0: ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यू और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अखबार का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार धन की केवल तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य धन को परोपकार में नहीं लगाते या स्वयं नहीं भोगते, उनके धन की केवल तीसरी गति होती है, अर्थात धन का विनाश हो जाता है। तात्पर्य ये कि हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 247। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज श्रृंखला की 12वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिएगा हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजेंद्र कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजेंद्र कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा बॉम्बे टॉकीज। इसके अंतर्गत लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से वीरधा के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक गीतकार और शायर राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे से मन चाहे गीत, दोपहर 3:30 से आपको सुनाएंगे नाट्य तरंग। इसके अंतर्गत सुनेगा नाटक सूखा पेड़, लेखन लोकेंद्र शर्मा का, निर्देशन लोकेंद्र शर्मा का। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग सुनेगा प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनाएंगे तराने नए पुराने। झरोखा शाम में आप सुनते हैं शाम 6:30 से, शाम 6:35 से संध्या रंजन।

अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित शिपॉय इमलियाकुम एओ की शौर्य गाथा सुनिएगा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज में अकॉर्डियन वादन रेवा चंद्र शर्मा का। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल, लेखन एमपी लेले, निर्देशन स्वतंत्र कुमार ओझा का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 से। रात 9 बजे से आपके लिए रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक बिमल रॉय पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। रात 10 बजे से छाया गीत आलेखन स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंदर कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुने रामचरितमानस गान भाग 247।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान भाग 247।

0: नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी। ये जो बांसुरी दिख रही है, पांच तरह की बांसुरी है इसमें, तो ये जो एक तो शंख बांसुरी है
2: जी,
1: और एक सबसे छोटी वाली बांसुरी को क्या कहेंगे?
2: ये हाई पार्श्वपतक।
1: गजब,
2: यहाँ तक चला गया। इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ।
1: हाँ।
2: थोड़ी सी शार्प हो जाएगी।
1: अरे गजब।
2: मैं पीछे। हाँ। सिक्किम का जो ये है।
1: जी जी जी बिल्कुल। हाँ

0: जी क्या बात है, बढ़िया। और उससे जो बड़ी वाली है उस वो कौन सी
1: ये
0: है?
1: पन्ना बाबू की बनाई हुई मेन क्लासिकल सोलो इसमें बजता है।
0: जी
1: पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आपको सुना रहा
0: जी जी सुना
1: और बंदिश मेरे गुरुजी की है
0: जी। प्लीज
1: कल्पेश भाई आप शुरुआत करिए।

0: वाह, राघवन सिद्ध ध्वनि पे ये बांसुरी की तान थी, अद्भुत थी, मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। तो हम आखिर में विदा के रूप में विदा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कड़ी को, इस श्रृंखला की विदा में आमद करेंगे कि आप फिर आते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा है, राग भैरवी से अंत करते हैं
0: जी।
1: आज की कड़ी आखिरी कड़ी है, इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि फिर आना है
0: जी।
1: तो भैरवी में एक जगजीत सिंह जी के भी बहुत सारे सुपरहिट गजलों में मैंने बजाया, उस स्टेज में गाते थे फयाज खान साहब को याद करके
0: जी।

0: अद्भुत तान छेड़ी आपने पंडित जी, और साथ में जो गायन का सुर भी साधा बड़ा ही मोहक था, बहुत अच्छा लगा। तीन ताल में निबद्ध ये बंदिश थी, अजीत जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे अंजाम दिया, और आज ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म ना होने दें और कड़ियां इसमें जोड़ते जाएं और मालाएं पिरोते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इस आखिरी कड़ी में हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। अजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से आपने तबला संगत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। कल्पेश जी, आपने बहुत ही मोहक ढंग से बांसुरी पर संगत कर रहे थे पंडित जी के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: रोनू दादा, आज इस श्रृंखला में जितनी कड़ियां पिरोई गई हैं, इन कड़ियों में जो बांसुरी की तान आपने छेड़ी है, जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है, बस इतना श्रोताओं को बता दें कि ये अद्भुत श्रृंखला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए, और लगा ही नहीं कि कैसे पूरा दिन बीत गया, और हम चाहते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में बार बार आएं और इसी तरीके से माँ सरस्वती की सेवा करें।
0: जी, हम सबका सौभाग्य है, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित

रोनू मजुमदार, आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। आपको बता दें, बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भोले बिसे गीत।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर दिन हम एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष आते हैं। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि धरती तभी मुस्कराएगी जब हर जीवन सुरक्षित होगा। जी हाँ, आज की हमारी यही जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं श्रोताओं, कि हमारी ये जो धरती है एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें कि दो प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल नामक पंच तत्वों से होता है। श्रोताओं, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं, इसमें हमारे पेड़ पौधे, प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व होता है, जिसे समन्वयात्मक रूप से पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि पर्यावरण का शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना होता है। परि और आवरण का समार्थक अर्थ है वह आवरण जो हमारे चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है, प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपयोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। श्रोताओं, यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्वयुद्ध के समान होता जा रहा है। विश्वभर में माने तो वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उल्लंघन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों में विकास के नाम पर विस्तार के मानव सभ्यता को महाविनाश की कगार पर ला खड़ा किया है। तो धरती जो तभी मुस्कराएगी जब हर जीवन सुरक्षित होगा, इसमें आपका और हमारा सभी का सहयोग अनिवार्य है। और ये कैसे हो सकता है, ये हम बात करेंगे इस गीत के साथ साथ।

श्रोताओं, विश्व की प्रसिद्ध नदियों जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मॉन्स, टेम्स आदि भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मोटी परत होती है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच होती है, जिसमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणों भारी अंतरिक्ष में प्रवर्तित नहीं हो पाती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे छोटे छोटे सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बन गया है कि वहाँ पर वो डूब जाने की स्थिति बन गई है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।

सोचता हूँ यही स्थिति रही तो महानगर जैसे जो भी बड़े बड़े नगर हैं वो प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। अमृतवाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक गई है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी आस्था, संवेदनशीलता प्राचीन काल से मिलती है। अर्थवेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो पृथ्वीया, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह पर यह भी विनय किया गया है, हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। यहाँ हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ होता है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचाना होगा। आज की आवश्यकता इस बात की है श्रोताओं कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं।

ये धरती तभी मुस्कराएगी जब हर जीवन सुरक्षित होगा। श्रोताओं, इसके लिए हमें आपसी मतभेद भुलाकर और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना होगा, ताकि समय रहते हुए सर्वनाश से बचा जा सके। प्रकृति बचाओ अभियान में कई तरह के आंदोलन चल भी रहे हैं। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी को बचाना होगा। भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना ही होगा। आमजन को हम बात बता दें कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के कारण जो सभी देश आपसी भेदभाव को भुलाकर पृथ्वी को बचाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रहे हैं, पृथ्वी और पर्यावरण बचाने बाबत आयोजित कार्यक्रमों को विश्व के सभी देशों में आयोजित किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः रोकथाम लगानी चाहिए। पौधरोपण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रयत्न किए जाने चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर सीमाएं लगाना भी जरूरी है। फिर से उपयोग और उससे अपशिष्ट के उपयोग की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। अधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहन और कल कारखानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। कम ईंधन के उपयोगी वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। सेवार्थ पृथ्वी बचाओ की दिशा को उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाना चाहिए।

श्रोताओं, धरती को बचाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी, नौजवान, महिला, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न देशों के संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से बढ़ती प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का हल निकाला जा रहा है। आज से हमें सभी को एक यह प्रण लेना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी और पर्यावरण को नुकसान पहुँचे या उसके लिए नुकसानदेह हो। हमें ईमानदारी से अपना कार्य करना होगा। इस प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी से अपनी सहभागिता बढ़ानी होगी। आसपास वृक्ष लगाने होंगे, पौधरोपण को बढ़ावा देना होगा, साथ ही साथ पेड़ों की कटाई पर रोकथाम लगानी होगी और इस तरह के जो भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कार्य हैं उन सभी को रोकने में हमें आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेना होगा, जिससे कि हम इस धरती को बचाने में अपना योगदान दे सकें।

इसके अलावा धरती हमारे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो श्रोताओं, हर जीवन सुरक्षित रहेगा तभी ये धरती मुस्कराएगी। हमारा आज का ये नमस्कार अलवर कार्यक्रम, यही जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे थे और ये कार्यक्रम अब समाप्त होने की तरफ है। हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है। तो कल इसी कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.1 MHz पर। 7:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सौतन। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में झुक गया आसमान फिल्म का ये गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का गीत।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे के।

0: बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा,

जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं

संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरियाले माओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की।

0: किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गई गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, गुलाम अली की गई गजलें।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 MHz पर सवेरे के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।

नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का मैं अर्चना जैन अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है, ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य और हमारी सेहत पीछे छूटती नजर आ रही है। नए जमाने की देन डिजिटल जिंदगी ने हमारी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन

0: सभी को प्रभावित किया है और इसका नतीजा हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में, जैसे गैस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी गंभीर बीमारियां हम नित्य प्रति फेस कर रहे हैं। और चाहे छोटी हों या बड़ी बीमारियां, सीधे हम दवाओं का उपयोग करने के लिए जल्दी प्रेरित होते हैं। तो ये बीमारियां जैसे सिर दर्द है, नींद नहीं आना है और बड़ी डिजीज़, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें हम बिना दवाओं के हरा सकें, या हमारा शरीर इतना सक्षम हो, उसमें इतनी विल पावर हो कि हम बिना दवाओं के ही सेहतमंद रह सकें? आज इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एमडी इन होम्योपैथी डॉक्टर प्रदीप कथूरिया जी को। डॉक्टर साहब, आज आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी अलवर को अपना धन्यवाद प्रेरित करना चाहूँगा। इसके उपरांत सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी श्रोताओं को अभिनंदन करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आज मेरे इस स्वास्थ्य संबंधित दिए हुए आपको सुझावों से एक अधिक स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलेगी और आप स्वस्थ रह पाएंगे। अभी आपके द्वारा जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बिना दवाओं के हम स्वस्थ कैसे रहें
0: जी,
1: सो बिना दवाओं के स्वस्थ रहना ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है और हम रह भी सकते हैं, बशर्ते एक बहुत पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है, उसको अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, दोज पीपल आर मोर हेल्दी दोज आर क्लोज टू नेचर देन ऑफ दोज आर अवे फ्रॉम नेचर। इसका मतलब यह है कि वो लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं जो कुदरत के नज़दीक हैं, इंस्पाइट जो कुदरत से दूर हैं। अभी कोरोना काल में हमने इसको देखा और पाया भी, यही सच है कि वो लोग जो गाँवों में रह रहे हैं या जो गाँवों में रहते हुए पुराने अपने आयुर्वेद या पुराने जो चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं और अपने खान पान में ध्यान रखते हैं, उन लोगों को कोरोना ने कम इफेक्ट किया, कम फैटल साबित हुआ इन स्पाइट ऑफ अर्बन पीपल। सो दूसरी जो बड़ी बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान का मानना है कि जन्म के बाद जितनी भी बीमारियाँ आती हैं ठीक हो जाती हैं अगर हम समय रहते उन बीमारियों का उपचार कर लें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमें कुछ होता है हम इंस्टेंट मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो पहला ट्रीटमेंट सबसे पहले हम अपने घर से ले लेते हैं, जो भी हमारे पास मेडिसिन पड़ी हैं उससे नहीं रिकवर होता हम मेडिकल स्टोर चले जाते हैं। तो मेडिकल स्टोर का मेरा मानना है कि मेडिकल स्टोर के जो काउंटर इंचार्ज होते हैं उन्हें दवाइयों की तो नॉलेज होती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि पेट दर्द के किस दर्द में आपको कौन सी दवाई देनी है। सो मेरा आपसे ये एक सुझाव है कि आपको अगर कुछ होता है और अगर आप महसूस करते हैं कि आपको शारीरिक अथवा मानसिक कोई समस्या है, तो सब प्रथम अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें और उनके सुझाव पे ही आपको मेडिसिंस लें
0: जी। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आजकल जो प्रेजेंट में चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं, फर्स्टली एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, हमारे श्रोता आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी पद्धति बेहतर है या इन्हें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे?
1: बहुत अच्छा आपका सवाल है मैम कि आपने पूछा कि कौन सी पद्धति हमें कब यूज़ करनी चाहिए। एलोपैथी जो अभी सब जगह प्रचलित है, मॉडर्न ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, होम्योपैथी को भी आए हुए ऑलमोस्ट करीब 350 साल हो चुके, आयुर्वेद तो तब से है जब से आदिकाल से हम लोगों ने जन्म लिया या हमारे पूर्वजों ने इसको अपनाया, यूनानी भी बहुत पुरानी है। लेकिन इन इमरजेंसी जितने भी इमरजेंसी डिजीज हैं, लाइक इंजरीज हैं, फ्रैक्चर है, हार्ट अटैक है, कोई आदमी बेहोश हो गया, तो उसमें हमें एलोपैथिक मदद लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई डिजीज़, बहुत अच्छा एक पुराना एग्जांपल है जिसमें मैं कहूँगा कि वेयर देर इज़ पैथोलॉजी देर एलोपैथी इज़ गुड, वेयर देर इज़ नो पैथोलॉजी बट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर देयर देन होम्योपैथी इज़ गुड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई जांच कराई डॉक्टर्स ने और उसके अंदर चेंजेस आ गए और प्रूव हो गया कि ये बीमारी है, तब तो आपको एलोपैथिक लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सारी जाँचें ठीक आ रही हैं और इवन देन आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है या आपको शारीरिक या मानसिक समस्याएं हैं, तो देन आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक खुराक लेनी चाहिए। आयुर्वेद बेसिकली कोई चिकित्सा पद्धति नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप आयुर्वेदिक तरीके अपनाते हैं जीवन शैली में
0: जी।
1: तो आपको बीमारियाँ तो होंगी नहीं, बल्कि आप उम्र दराज भी होंगे, जो पुराने शब्दों में हम कहते थे शतायु। तो अगर आपको शतायु रहना है तो आयुर्वेद के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, जिससे आप बीमार होना

0: हो जाएंगे। इवन देन अगर कुछ आपको होता है
1: जी,
0: जिसमें रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, देन यू शुड गो फॉर होम्योपैथी, तो आपको होम्योपैथी इलाज से परमानेंट रिकवरी होगी
1: जी। अच्छा सर, हम आपके सफ़र के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि इस चिकित्सा पद्धति के लिए आपको कब रुचि हुई कि मैं इस लाइन में आके और समाज सेवा कर सकता हूँ, इस बारे में कुछ बताइए।
0: जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि बचपन से ही शायद मेरी चिकित्सा पद्धति में रुचि थी, और वो हम सभी लोग मानते हैं और स्पेशली हम हिंदूज ये मानते हैं कि भाई जो डेस्टिनी ने या जो परमात्मा ने लिखा होता है, बचपन से आपको उसी हिसाब से टेस्ट डेवलप हो जाता है। पर दसवीं तक आते आते मुझे पता चला कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उस समय हमारे ज़माने में 11वीं क्लास होता था, 10+1 होता था, नो 10+2। 11th के बाद मैंने एडमिशन लिया होम्योपैथी कॉलेज में, और सन 80 में मैंने एडमिशन लिया, सन 1985 में मैंने पास आउट किया, और परमात्मा की कृपा है मेरे मार्क्स अच्छे थे। मैंने स्टार्टेड किया अपना करियर एज ए लेक्चरर होम्योपैथी कॉलेज अलवर से, और तकरीबन मैं 22 साल होम्योपैथी कॉलेज अलवर में एज ए प्रोफेसर रहा, लेक्चरर देन रीडर देन प्रोफेसर। इसके बाद मैंने एनएन मेडिकल कॉलेज आगरा ज्वाइन किया, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और अभी मैंने वो कॉलेज छोड़ दी है, और मैं पिछले 40 सालों से अलवर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसे हम समाज में रहकर समाज के लिए कुछ अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं।
1: काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो बहुत से मरीज आप रोज़ फेस करते हैं, तो क्या मेजर प्रॉब्लम आप लोगों में देखते हैं? मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या जीवन शैली में बदलाव या खान पान, क्या मेजर जो रीज़न है जो लोगों की लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहा है और उन्हें बीमारियों की तरफ धकेल रहा है?
0: आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि 90% बीमारियाँ तो बीमारियाँ है ही नहीं। ये हमारा भ्रम होता है कि हम बीमार हैं, नहीं, मुश्किल से 10% बीमारियाँ हैं जिसके पीछे कॉज होता है, कारण होता है, लाइक जैसे मलेरिया है, मच्छर काटने से होता है
1: जी,
0: कोलेरा है, आप इन्फेक्टेड फूड ले लेते हैं तो उससे आपको हैजा हो जाता है, इसी तरह की आप थोड़ी सी बीमारियाँ लाइक टाइफाइड है, दैट इज़ ऑल्सो ए डिजीज़, कोरोना था, ये वायरल डिजीज़ था। इसके अलावा 90% बीमारियां जो हैं आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पौष्टिक तत्वों की कमी से, खान पान में प्लस आपके दिनचर्या के
1: जी
0: डिस्टर्ब्ड होने से होती हैं। उठते ही आप पानी पिए, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इसके बाद जो पहला आपका नाश्ता जो सेवन होना चाहिए उसमें कम से कम दूध जरूर शामिल हो
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप एगेटेरियन है आप एक एग भी ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें, स्प्राउट्स या खिचड़ी दलिया ले सकते हैं। लेकिन अभी देखा गया है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग शहरों में, हम देखते हैं एज ए डॉक्टर हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनको नॉलेज है एंड वो सब सुबह आपको चौराहों पर कचौरी समोसे खाते हुए मिल जाएंगे, और उनसे हम दिनचर्या पूछते हैं तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं, साहब सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, रात 2 बज जाते हैं सोते सोते। तो मेरे सवाल है जब आप 8 बजे या 9 बजे खाना खा लेते हैं तो 2 बजे तक क्या करते हैं?
1: जी सर, यहाँ एक डाइवर्जन भी है, वो इस तरह कि काम करने के आजकल तरीके बदल गए हैं। कई कंपनीज में लेट आवर्स सर्विसेज लोगों को देनी होती हैं, तो ना वो जल्दी उठ सकते हैं और ना कोई और रूटीन फॉलो कर सकते हैं। वो किस तरह सेहतमंद रहे, मतलब वो अपनी लाइफ से कैसे टाइम निकाले और कुछ खान पान उनका किस तरह का हो?
0: हाँ, इसमें बहुत अच्छा आपका सवाल है। वैसे तो ये जो कंडीशन है सिर्फ 10% अर्बन्स में है, विलेजेस में तो अभी भी दिन सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये कंडीशंस हैं तो इसके लिए भी मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान देखा कि हम ऑफिस में रहते हुए भी ऑफिस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अपने जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो ह्यूमन राइट्स को अच्छे से पहचानती हैं, तो उन लोगों ने अपने ऑफिस में जो हमारी सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के स्टाफ होते हैं उनके लिए जिम भी खोले हुए हैं, एक अच्छे फूड बार्स भी खोले हैं। ये डिपेंड हम पे करता है कि
1: हम उन्हें क्या
0: कैसे ऑप्ट करें। अगर आपको रात का शिफ्ट है, जैसे अभी हम सर्विसेज सेक्टर में जाते हैं तो उनका जो वर्किंग स्टार्ट ही 12 बजे के बाद होता है, तो डेफिनेटली ये उनकी मजबूरी है, बट हम चाहें तो अपने इन सारे दिनचर्याओं को कन्वर्ट कर सकते हैं।

0: अपने समय अनुसार, अपनी बॉडी की नीड के अनुसार।
1: और बात करें यदि हम दिनचर्या की, तो एक तनाव की स्थिति जिससे आज हर व्यक्ति बचना चाहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस तनाव को दूर करने में जो एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, म्यूजिक,

0: अपने समय अनुसार, अपनी बॉडी की नीड के अनुसार।
1: और बात करें यदि हम दिनचर्या की, तो एक तनाव की स्थिति जिससे आज हर व्यक्ति बचना चाहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस तनाव को दूर करने में जो एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, म्यूजिक, उसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और श्रोताओं सुनते हैं गीत और फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

0: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कथूरिया जी और इनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि जैसा हमने जिक्र किया तनाव की स्थिति जो आज हर व्यक्ति, मैं कहूँ व्यक्ति क्या, बच्चों से भी रिलेटेड है, इससे कैसे हम रिलैक्स हों और क्या बेहतर उपाय, जैसे योग और व्यायाम भी कहे जाते हैं, क्या प्रेफर करेंगे आप?
1: मेरा मानना है कि तनाव जो है सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो घर से ही स्टार्ट होता है
0: जी।
1: अगर आप देखें जो एक माँ जिसका बच्चा 1 साल या 1.5 साल का क्रॉलिंग स्टार्ट करता है तो माँ डर के मारे कहीं उसको चोट ना पहुँच जाए तो उसको डराती है, आ जाओ चूहा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, भूत आ जाएगा। सो डर तो सर्वप्रथम माँ ही पैदा करती है और माँ ही सबसे पहली मित्र होती है अपने बच्चे की। इसके बाद जो अभी जो बहुत बड़ा कल्चरल चेंज आया है समाज के अंदर वो ये है कि मदर चाहती है कि 2 से 2.5 साल में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो जाए
0: जी।
1: एज ए डॉक्टर मैं मानता हूँ कि बच्चे 4 से 5 साल तक अमूमन बेड वेटिंग करते हैं। अब अगर सपोज 2.5 साल के बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो गया जहाँ उसको डिसिप्लिन में रहना है, सामने टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उसको अगर ऐसा कुछ करता है बड़ा
0: अचानक उसकी लाइफ में एक चेंज आ गया।
1: सो मेरा मानना है कि हम पेरेंट्स को सबसे प्रथम जो पेरेंटिंग आना चाहिए कि हमें बच्चे को बड़ा कैसे करना है बिना डर के
0: जी।
1: दूसरा स्कूल्स का भी मेरा मानना है कि ठीक है प्राइवेट स्कूल्स ये कह देते हैं कि नहीं जी हम पढ़ाते नहीं हैं, वो तो खेलता है, किंडरगार्टन वगैरह वगैरह जो भी है, पर बच्चे की जो ग्रूमिंग घर में रह के माँ के साथ हो सकती है, परिवार के साथ हो सकती है, वो आयाओं के साथ या स्कूल्स में नहीं हो सकती। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, कोशिश

0: हमने बच्चे को कम से कम 3.5-4 साल से पहले स्कूल ना भेजें, इवन देन अगर आपका मन है उसको एजुकेट करने का तो आप घर में ही उसे एजुकेट कर सकते हैं।
1: लेकिन आजकल ये समस्या भी आती है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, तो इसके लिए फिर उन्हें अपना बच्चे को या तो किसी क्रैश में डालना है या फिर वो चाहते हैं कि वो स्कूल अगर जाने लग जाए तो वो उससे थोड़े टाइम के लिए फ्री हो सकते हैं और अपने जो टाइम है वो सर्विस पे देंगे, लेकिन जो बचे हुए टाइम है उसमें ये पेरेंटिंग ज़रूर की जा सकती है, क्या कहेंगे आप?
0: बिल्कुल सही है। अभी चूंकि हम लोगों ने अपने आर्टिफिशियल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा दिए हैं, बिकॉज खाना पहले मदर्स घर बनाती थी, अब पैक्ड फूड आने लग गया और पैक्ड फूड इट इज़ लाइक ए पॉइजन, स्लो पॉइजन, क्योंकि पैक्ड फूड मीन उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे
1: जी।
0: सो
1: खाने को जो लंबे समय तक बनाए रखते हैं।
0: देखा जाए तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, अगर वो पेरेंट्स बन गए हैं आफ्टर मैरिज, तो मदर को कम से कम 2-3 साल तक जॉब स्किप कर देनी चाहिए या इस टाइप की जॉब लेनी चाहिए जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो सके,
1: ताकि
0: बच्चों को परवरिश मिल सके अच्छे से, क्योंकि माँ से अच्छी परवरिश कोई नहीं कर सकता दुनिया में, शायद परमात्मा ने माँ को बनाया ही इसीलिए। और दूसरा मेरा मानना है कि अभी मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मदर्स जो हैं वो पैक्ड फूड ले आती हैं, सेरेलैक, फेरेक्स, ये चीज़ें अवॉइड करें। हाँ, कभी आप ट्रेन में हैं, सफ़र में हैं, जहाँ पॉसिबल नहीं है, देयर यू कैन प्रिपेयर
1: अदर्स,
0: कोशिश करें कि हाँ सूजी का हलवा बना दें, सूजी की खीर बना दें। एंड स्पेशली एक सवाल जो मेरे पेशेंट्स मेरे से हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक ही बात होता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस विषय में हमेशा एक ही बात कहता हूँ अपने पेशेंट्स की, ईट मोर विच गॉड हैज़ मेड, ईट लेस विच मैन हैज़ मेड, मीन वो चीज़ें ज़्यादा खाओ जो परमात्मा ने बनाई हैं, वो चीज़ें कम से कम खाओ जिसमें इंसान ने अपना दिमाग लगा के उसको कन्वर्ट कर दिया। लाइक इसका एग्जाम्पल मैं एक ही तरह से दे पाऊँगा कि आम भगवान ने बनाया है, अच्छे से खाएं, खूब खाएं, अगर आपको आम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चा आम तोड़ के कैरी का अचार तो हमने बना दिया, चना भगवान ने बनाया, चना आप खाएं, चने की रोटी खाएं, चने की सब्जी खाएं, स्प्राउट्स खाएं, लेकिन चने को पीस के बेसन बना के हमने गट्टे खाए वो भी ठीक है, कड़ी खाई ठीक है, लेकिन हमने उसको पकौड़े बना के खाने चालू कर दिए वो थोड़ा सा गलत है। आपको जो है गेहूँ है बहुत अच्छा है, गेहूँ खाएँ, गेहूँ का दलिया खाएँ, गेहूँ के आटे की रोटी खाएं, लेकिन मैदा बारीक पीस के आलू टिक्किया समोसे हमने बना दिए ये गलत है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए, कुदरत ने जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में अगर हम खा सके तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे फल फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, दालों में भी साबत दालें ज़्यादा अच्छी होती हैं इन स्पाइट ऑफ बिना छिलके के, तो उसको हम स्प्राउट कर सकते हैं, जिसको हम पुराने ज़माने में सभी मदर समय करके देती थी अंकुरित, जो अभी लेटेस्ट उसमें स्प्राउटेड हो गया फूड जो है, सो वी कैन ईट दैट।
1: जी, ये तो रही सर खान पान की बात, लेकिन और भी लाइफस्टाइल से संबंधित ऐसी लोग क्या गलतियां कर रहे हैं या क्या चीज़ें जो हैं पुरानी जिन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं वो और फिर बीमारियों की तरफ अग्रसर हैं?
0: बिल्कुल, मैंने गाँवों में भी बहुत बड़ा बदलाव देखा है, जो अच्छा सिंबल नहीं है, गाँवों के बच्चे पहली बात पढ़ लिख गए हैं तो अब वो गांवों के कार्यों में अपने जो उनके पेरेंट वर्क्स होते थे पशुधन एग्रीकल्चर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पहले गांवों में क्या होता था, हर घर में 2-3 पशुधन होते थे, अगर किसी के पास 3 पशुधन है तो एक पशुधन का वो दूध घर में रखते थे, उसमें छाछ भी दही भी सब होता था और 2 को बेचते थे। अभी गाँव में क्या कल्चर हो गया कि 3 पशुधन है, तीनों का दूध वो बेच देते हैं, जो जाग बची उसमें पानी मिला के वो लोग अपना यूज करते हैं चाय, या जो बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं पशुधन के अपने उसको। इसको तो मैं इस तरह से कहूँगा कि आप सड़क पर जा रहे हैं, एक तरफ मंदिर है एक तरफ बार है, आप मंदिर में जाके बार में जा रहे हैं, तो हमारी अपनी मूर्खता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए हम सबको अवेयर होना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए, हमें वाइज होना चाहिए सबसे पहले अपने लिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरी जो सबसे अहम बात आ रही है, अभी यूट्यूबर्स एंड बच्चे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली जिम जाने लग गए हैं, और जिम में इन लोगों को प्रोटीन पाउडर्स वगैरह देते हैं जिसकी कीमत 3-3 हज़ार है, तो मेरा मानना है कि बजाय 3 हज़ार आप प्रोटीन पाउडर पे खर्च करते हैं और जिसपे बस मैं अंदर की गहराई नहीं बता पाऊंगा, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपको।
1: सभी का स्वागत है, और डॉक्टर साहब अभी मैं जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे उसी से रिलेटेड यही पूछना चाहूँगी आपसे कि आराम पसंद जिंदगी, जैसे लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं हम सीढ़ियाँ ना चढ़ के, और जो चीज़ें कई बार पॉसिबल भी नहीं होती है, जैसे पहले हमारे यहाँ घर में चक्की का पिटसा हुआ आटा हम यूज़ करते थे, गेहूँ लाते थे, लेकिन आज हम बिल्कुल रेडीमेड आटा ही घर पे ला रहे हैं,

0: इन चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ना और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर आना चाहूँगी।
1: बिल्कुल, चिकित्सा विज्ञान हमेशा से ये कहता आया कि पैरों का काम ज़्यादा करो, हाथों का काम करो। तो पैरों का काम हम क्या करते हैं? चलने में
0: जी,
1: ऊपर नीचे जाने में। हाथों का काम खाने में होता है। सो हमें हाथों से कम अपने दिनचर्या को रखना चाहिए, पैरों से ज़्यादा रखना चाहिए। दूसरा, हम हर छोटी सी बात के लिए, अगर हमें कहीं 500 मीटर जाना है, हम बाइक स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं
0: जी।
1: सो मेरा मानना है कि आप पैदल वॉक करें। और दूसरा बात जो आपने कहा डिजीज़ का और दिनचर्या का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी गेहूं भी उतना अच्छा मैं नहीं मानता, लेकिन गेहूं में हम यूरिया डाल के जो उसको उगाते हैं, तो बजाय हमें ऐसे अन्न खाने चाहिए जिसमें यूरिया ना डलता हो। बहुत सारे अन्न हैं जिसमें यूरिया नहीं डलता, बाजरे में नहीं डलता, चने में नहीं डलता, ज्वार में नहीं डलता। सो हमें ऐसे अन्न का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। गेहूँ का आटा हम खा सकते हैं, लेकिन उसको हम मिक्स करके खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम कहते हैं कि रागी है। बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमारे पूर्वज बहुत इस्तेमाल करते थे और बहुत स्वस्थ भी रहते थे।
0: सेकेंडली, पुराना जो हमारा परंपरागत खाने के तरीके थे उन पर हम लौट
1: वो ज़्यादा
0: बिल्कुल,
1: बल्कि इसमें तो मैं इस तरह से कहूँगा, जैसे आपने सवाल किया है, तो दो तरह का आहार होता है, एक स्वस्थ आहार एक स्वाद आहार। स्वस्थ आहार तो वो होता है जो आपके शरीर को पौष्टिकता देता है और आपकी बायोलॉजिकल एज को भी रोकता है। एज पर WHO बायोलॉजिकल एज जो है वो 49 to 64 ईयर है, 60 ईयर है। एंड US जो कंसेप्ट ऑफ मेडिकल है वो उसके अंदर जो है 45 to 64 ईयर है। एंड इंडियन कंसेप्ट में 45 to 60 ईयर है। तो मिडिल एज अमंग फीमेल्स एंड मेल्स में स्टार्ट होती है। फीमेल्स में मिडिल एज आमतौर पर देखा गया 30 से स्टार्ट होती है, मेल्स में 35 से स्टार्ट होती है। इसी तरह से हमारे पुराने ज़माने जो शादियां होती थी वो मेल की एज ज़्यादा होती थी, फीमेल की कम होती थी, ताकि एक एज के बाद वो दोनों का बायोलॉजिकल एज बराबर हो जाए। क्योंकि लेडीज़ का एक अपना जो है फैमिली ट्री बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें भी उनको काफ़ी वीकनेस और एजिंग आता है। लेकिन इस मिडिल एज को हम चाहें तो 50 तक ख़त्म कर सकते हैं और इस मिडिल एज को चाहें तो 75 तक मेंटेन कर सकते हैं। मीन हम लोग 30 से 75 तक या 35 से 75 तक कितने हेल्दी रह सकते हैं, जितना हम 35 या 40 साल की एज में रहते हैं, ये हम पे निर्भर करता है।
0: यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि ठीक है हम अपना लाइफस्टाइल पर ध्यान रखकर हम काफ़ी टाइम तक दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ साइंस भी बॉडी के ऐसे हैं जिन्हें हम पहचान कर इस ओर जागरूक हो जाएं कि अब हमें हमारे शरीर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उन्हें हम जानना चाहेंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसको हम इंग्लिश में कहावत है जिसको मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, वी आर द गॉड ऑफ आवर ऑन, हम अपने भगवान खुद हैं
0: जी।
1: अगर हमें पानी की प्यास लग रही है तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: अगर हमें कुछ नमक या नमकीन चीज़ खाने का मन कर रहा है, इसके लिए हमारे जो बॉडी के अंदर है सोडियम की कमी हो रही है। हमारी बॉडी अपनी सिंबल देती है, अगर हम उन सिंबल्स को इग्नोर कर दें तब वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टार्ट होता है ग्रेजुअली और फिर वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमें ध्यान से जस्ट अपने आप को कंसंट्रेट करना है और फिर बॉडी अगर कुछ कह रही है, अगर हम उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे, तो हमें अपने डॉक्टर से, जो भी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, अभी दिक्कत ये आ रही है कि मोबाइल्स पे आपके पास SMS आ रहे हैं फुल बॉडी चेकअप 3900 का, 2500 में, या इस तरह के जो भी हैं, और हम जाते हैं सीधा अपना चेकअप कराते हैं। फिर चेकअप कराने के बाद पैरामीटर्स में कहीं अप एंड डाउन होता है, उसको लेते कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उस डॉक्टर से पहले भी हम उसको गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना चालू कर देते हैं कि पोटेशियम की कमी हो गई, एक की कमी हो गई। तो मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स पे हम ट्रस्ट ना करें, अगर हाँ यूट्यूब पे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी बातों हम ध्यान से सुने,
0: वरना हमें मतलब यही सही तरीका है कि डॉक्टर के पास जाकर जेन्युइन प्रॉब्लम अपनी बताकर और उसी को हम फॉलो करें जो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं।
1: स्पेशली इस सबके अलावा मैं और भी कहना पाऊंगा, नॉर्मली हम ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके उसको हम खुद ही बंद कर देते हैं। सपोज डॉक्टर ने 5 दिन का मेडिसिन दिया, 2 दिन में आराम आ गया, तो हम दवाई बंद कर देंगे और फिर डॉक्टर को वापस रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप हाफ ट्रीटमेंट लेते हैं तो डिजीज सप्रेस हो जाती है और कुछ दिन बाद वापस रिकरेंस होगी। एंड स्पेशली चिकित्सा विज्ञान में दो शब्द बड़े फेमस हैं, ट्रीटमेंट एंड क्योर। सैकड़ों पेशेंट एक ही बात कहते हैं कि हमने बहुत ट्रीटमेंट ले लिया, थोड़ा आराम आता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। और कुछ जो बुजुर्ग हैं वो ये भी कहते हैं, सर पहले डॉक्टर

0: डॉक्टर्स भी अच्छे थे, दवाइयाँ भी अच्छी थी, अब तो डॉक्टर्स भी ऐसे हो गए दवाइयाँ भी अच्छी नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स पहले के मुकाबले 100 गुना अच्छे हो गए, चाहे एलोपैथी के हों होम्योपैथी के हों, लेकिन दवाइयों में भी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा आ चुकी है। दिक्कत कहाँ आ रही है?
1: हमारे ट्रीटमेंट लेने के
0: हमारे
1: तरीके में
0: तरीके में आ रही है। एंड ट्रीटमेंट मीन मेडिसिन लिया, रिलैक्स हो गया, मेडिसिन बंद किया, रिलैप्स हो गया, इसमें हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया। सेकेंड वर्ड होता है क्योर। क्योर कौन होता है? इलाज। बहुत पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा मैं ठीक हो गया, मेरा इलाज हो गया, मैं 20 सालों से ठीक हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा थैंक्स टू ऑल माइटी आई एम ओके नाउ, थैंक्स टू डॉक्टर एक्स वाई। सो मेरा मानना यह है कि क्योर कभी भी दवाइयों से हुआ ही नहीं आज तक।
1: जी।
0: अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जब छोटे बच्चों को लूज मोशन होते हैं तो डॉक्टर उनको दवाई बताते हैं 6-6 घंटे, तो पेरेंट्स रात 12 बजे तक जाके भी उसको दवाई देते हैं, और खाने में अगर डॉक्टर्स ने बता दिया कि इसको अनार देना है, 400 रुपए किलो आएगा, हम लाके देंगे।
1: जी, मतलब वो
0: उसको हम गोदी में, यस,
1: हम
0: उसको गोदी में रखते हैं,
1: यस,
0: हम उसको गोदी में रखते हैं, रेस्ट कराते हैं। तो द रोल ऑफ मेडिसिन इज 33%, द रोल ऑफ डाइट चार्ट इज 30%, द रोल ऑफ लाइफ स्टाइल, जिसमें हमने बच्चों को एज पर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर रेस्ट कराया, बच्चा दूसरे दिन या तीसरे दिन में बिल्कुल फूल की तरह खिल जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वही हमें हो जाए, हमने सुबह की मेडिसिन लिया, दोपहर को भूल गए अपनी दिनचर्या में, खुद के लिए हम अनार नहीं, हम वही रोटी खा लेते हैं जो भी बनी है, रेस्ट कर नहीं सकते, दिनचर्या है। तो हमारा मोशन 7 से 8 दिन में रिकवर होता है, उसके बाद हम डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर मोशन तो ठीक है बट अच्छा नहीं लग रहा, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इसका लेके हमने वो तीनों स्टैंड्स प्रॉपर नहीं लिए, तीनों स्टेप्स पे हम रेगुलर नहीं रहे, दैट्स द रीजन।
1: जी सर, बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके आज आपने हमें बताए हैं, जिनसे हम अपनी जीवन शैली में यदि आज से ही कोई व्यक्ति बदलाव करना चाहे तो उन्हें अपनाकर वो अपने लाइफ को बेहतर कर सकता है। यहाँ हम आपसे एक यह भी जानना चाहेंगे कि यदि कोई हमारे श्रोता हैं वो आपसे इन्हीं सब चीज़ों पर परामर्श लेना चाहें तो वो कैसे आपसे संपर्क करें?
0: बिल्कुल, मैं सभी श्रोताओं को पुनः से स्मरण कराते हुए अपना परिचय दूंगा। मैं डॉक्टर प्रदीप कथरे हूँ, मैंने MD होम्योपैथी से किया है, तकरीबन पिछले 41 वर्षों से मैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज प्रदान कर रहा हूँ। और सभी श्रोताओं को मैं एक और प्रिविलेज देना चाहूँगा, वो जब भी मेरे पास आना चाहें तो एक अपॉइंटमेंट ले लें, मैं उनको फीस निःशुल्क कर दूँगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी उनसे। और मेरा जो कार्यस्थल है, जो मेरा अपना हॉस्पिटल है, 5/2 कलकुआ हाउसिंग बोर्ड अलवर में।
1: जी, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपका चाहेंगे।
0: श्रोताओं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ध्यान से सुने, 9414018523, 94-140-18-523।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कथुरिया जी, आज बड़ा ही रोचक सा ये कॉन्वर्सेशन हमारा रहा, जिसका लाभ मैं निश्चित रूप से समझती हूँ कि हमारे श्रोताओं को मिलेगा, और आगे भी ऐसी ही कुछ जानकारी के लिए हम आपका साथ चाहेंगे। आज के लिए आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद मैम, आपको भी और आकाशवाणी अलवर को भी।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेंगलुरु से आई पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन, 18 जुलाई तक दो दो पारियों में

0: ली जाएगी ये परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, अधिकांश हिस्सों से बादल छटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से यात्रियों के लिए शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट के बेंगलुरु से जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत किया। ये फ्लाइट फिर से यात्रियों को लेकर जोधपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से 37 एकड़ में बना ये 24,000 वर्ग मीटर का भव्य भवन पुराने टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। एयरपोर्ट के इस टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश द्वार और 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। पहली बार सीधे विमान में जाने के लिए एरोब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट बनाई गई हैं। अक्टूबर में नए पर्यटन सत्र में कई नए शहरों के लिए यहां से उड़ान संचालित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके कल प्रदेश दौरे पर रहे। श्री उइके ने उदयपुर में केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया। बैठक में जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा के चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि कोटा के समग्र विकास को तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है। आने वाले सालों में कोटा शिक्षा के साथ साथ खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहरों में विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कोटा का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चंबल गार्डन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: आने वाले समय के अंदर यह आधुनिक से बना हुआ चंबल गार्डन भी राजस्थान और देश का सबसे प्रमुख गार्डन होगा जो चंबल के किनारे होगा। ये गार्डन निश्चित रूप से पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा, क्योंकि गार्डन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन चंबल का किनारा नहीं हो सकता। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र राजस्थान और देश का प्रमुख शहर बने, इस सारे देश की समृद्धि खुशहाली का आधार होगा।
0: प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर

0: 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन और शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने के बाद अधिकांश हिस्सों से बादल छटने लगे हैं और बारिश की गतिविधियां सीमित हो गई हैं। साथ ही पारे में भी उछाल देखा गया है। श्रीगंगानगर 41.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा फलोदी और जैसलमेर में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। इस बीच एक हफ्ते से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में आज तीसरे दिन भी धूल भरी आंधी चल रही है। दिन रात लगातार आंधी चलने से अंकुरित हो रही खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जुलाई से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। आज हनुमानगढ़ जिले का 32वां स्थापना दिवस है। 3 दिनों से मनाया जा रहा पंच गौरव भटनेर उत्सव का आज समापन होगा। इसके तहत कल जिले भर में ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता, खेलकूद, चित्रकला, मानव श्रृंखला और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज से 32 वर्ष पूर्व 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जिले से अलग होकर हनुमानगढ़ राजस्थान का 25वां जिला बना था। स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय पंच गौरव भटनेर उत्सव का समापन रन फॉर हनुमानगढ़ शोभा यात्रा और राजीव गांधी स्टेडियम में सुरमई संध्या स्टार नाइट के साथ होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1ली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। जोधपुर में आज से 17वां अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार कार्यक्रम शुरू हुआ। वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मसूरिया पहाड़ी पर स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक स्थल पर ये कार्यक्रम मारवाड़ में अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के उद्देश्य से किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन। 18 जुलाई तक दो पारियों में ली जाएगी परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा। अधिकांश हिस्सों से बादल छटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी। और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 MHz पर आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे के सली मर्चेंट और साथियों की आवाजों में इकबाल फिल्म का गाना। इरफान सिद्दकी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं पे ख्याल हो कर वो ही किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: गाने इन
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमा।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए हैप्पी फिर भाग जाएगी फिल्म का ये गाना।
1: कित चलिए हंज बैके याद आनिया रह रह के, कित चलिए हंज बैके याद आनिया रह रह के।
2: चलो आ जाओ यार अभी डांस फ्लोर पे।

0: छोड़ो जी,
1: ब्रेकिंग न्यूज़ है, गुड़ी करो का हो गया है, मजनू थे।

स्थित और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 से मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर रेत और धूल भरी आंधियों के असर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस चुनौती से निपटने के लिए वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि आवश्यक है। इस वर्ष की थीम है स्रोत से प्रभाव तक, रेत एवं धूल भरी आंधियों से भूमि और जीवन की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देहाती डिस्को फिल्म का ये गाना

संगीतकार थे गणेश आचार्य। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में गीतकार हैं अमरिक सिंह और कुमार, और संगीतकार हैं जसलीन रॉय। फिल्म का नाम बार बार देखो और उसका ये डांस नंबर।

अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में देहाती डिस्को फिल्म का गाना, गीतकार थे प्रणव वत्स।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

तो फिल्में बॉक्स ऑफिस से चाहती हैं प्यार का आसरा, लेकिन सभी फिल्मों के खाते में सफलता के सिक्के नहीं खनकते। आज जिस तरह से बॉक्स ऑफिस से फिल्में धराशायी हो रही हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो कौन विश्वास करेगा कि एक जमाने में उन्होंने सम्मोहित कर रखा था दर्शकों को, जो हैं हमारे आज के फनकार। बूझिए तो भला।

पहचान गए होंगे, हमारे आज के फनकार हैं जुबली कुमार यानी अभिनेता राजेंद्र कुमार। इतनी सुनहरी है राजेंद्र कुमार की दास्तां कि आपकी इस रेडियो सखी का एक मन तो ये हुआ कि बस एक लाइन से फिल्मों के नाम गिनाएं और सुनवाते जाएं उनकी फिल्मों के सुरीले नगमे में।

मैंने कहा कि आपकी रेडियो सखी का मन तो ये हुआ कि फिल्मों के नाम बताएं और गीत बजाते जाए, पर भला ये सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार की दास्ता कहाँ रहती। तो फिर सुनिए, राजेंद्र कुमार तुली जन्मे तो 20 जुलाई 1929 को थे सियालकोट में, जो अब सरहद के उस पार है। फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद, जब परिवार आया मुंबई और जब राजेंद्र कुमार निर्देशक एचएस रवैल के सहायक बन गए। शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी।

सचमुच राजेंद्र कुमार का करियर दिए और तूफान की लड़ाई की तरह थी। फिल्म जोगन से जो दिया जला उसे सितारा बनने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। सन 1957 में राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नजर आए।

0: नाचल पागल कल न जाने रे क्या है दुख भर दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे
1: जीवन में नया लायो
0: रे ओ दुख भर दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे
1: जीवन में नया लायो रे
0: होए होए दुख भर दिन बीते रे भैया बीते रे भैया।
2: अपने जमाने के तमाम चर्चित अभिनेत्रियों के पीछे लहराते हुए गीत गाने का मौका मिला था इस अलबेले नायक राजेंद्र कुमार को। आइए हम भी भीगे प्यार की इन मस्त फुहारों में और चले उस फ्लैशबैक पर जहां हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अलग अलग तारिकाएं। फिल्म संगम, राजेंद्र कुमार और बैजंती माला।

0: बात चल रही है राजेंद्र कुमार की उस मोहब्बत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपनी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू, राजेंद्र कुमार और साधना।
1: वो नाजुक लबों से

0: नफरत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपनी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू, राजेंद्र कुमार और साधना।
1: वो नाजुक लबों से

0: सदाबहार गानों का जिक्र चल रहा है तो आपको ये बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सन 1963 और 1966 के बीच लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इसे कहते हैं किस्मत।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस

0: मिलाकर अपनी फिल्मी यात्रा में राजेंद्र कुमार एक ऐसे आधार स्तंभ बन गए जिसे डिगाना आसान नहीं था। एक लंबे समय तक मेलोड्रामा यानी अति नाटकीयता, त्रासदी और आंसू बहाव फिल्मों का दौर जारी रहा, जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका रहा। बीच बीच में बाद के दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई। विडंबना देखिए कि सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया उसका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार का बंगला भी खरीद लिया।
1: हुस्न वाले

0: गीतकार और निर्देशक सावन कुमार की यादों में राजेंद्र कुमार आज भी बसे हैं। साजन बिना सुहागन फिल्म की एक घटना को याद करते हुए सावन कुमार कहते हैं,
1: एक दिन राजेंद्र कुमार जी का बर्थडे था और मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मुझे जानती थी, बोले भाई साहब आइए आप बैठिए मैं उनको खबर करती हूँ। तो उनको खबर किया तो वो कहने लगे सावन जी को यही भेज दो। तो पीछे मैं गया जहाँ वो बैठे हुए थे तो वहाँ राज कपूर साहब बैठे थे उनके साथ। तो मैंने देखा इतने बड़े आदमी का बर्थडे है, कोई है नहीं, और चंद बुके पड़े थे फ्लावर्स के भी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने अपना बुके दिया और उनको विश किया कि भैया हैप्पी बर्थडे आपको, तो मैं आपके लिए उन्होंने कहा एक और गिफ्ट लाया हूँ और वो है कि एक पिक्चर आप मेरी कर रहे हैं। जबकि चार साल से घर बैठे थे, कोई फिल्म नहीं थी उनके पास, जुबली स्टार थे। तो सबसे पहले राज कपूर साहब खड़े हुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि भाई तुमने आज मेरे दोस्त को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है जो मैं नहीं दे सका, मेरी हिम्मत नहीं है सब इनके साथ फिल्म बनाने की, अगर तुम बना रहे हो तो मेरी दुआ है तुम्हारी फिल्म गोल्डन जुबली होगी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि राज साहब आप मेरी पिक्चर का क्लैप दीजिए। उन्होंने कहा कि क्लैप नहीं दूंगा, मैं सिल्वर जुबली की ट्रॉफी बांटने आऊंगा इस फिल्म की। और उनकी मुबारक जुबान जो है ना अल्लाह ने कबूल की और पिक्चर सुपर हिट हुई और वही ट्रॉफी बांट के गए मेरी इस फिल्म की।

0: सावन कुमार साहब, अभिनेता राजेंद्र कुमार को आप किस रूप में याद करना पसंद करते हैं, किस रूप में वो आपको याद आते हैं?
1: वो खाली एक अभिनेता ही नहीं थे, बड़े अच्छे इंसान थे और मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें बता बता के सारी चीजें, मैंने अपने आप को बड़ा एजुकेट किया इस तरह से। ऐसे कई बार राज साहब से बातें होती थी तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पर राजेंद्र कुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में बनाई और हमने वो 3 फिल्में इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए, ऐसा लगा नहीं को किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ या बहुत बड़े आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और हर वक्त वो एक फिलोसोफर, गाइड और फ्रेंड, अच्छे

0: दोस्त की तरह हमेशा साथ रहे मेरे।
1: साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली और ओ बेवफा,
0: ओ बेवफा।
1: हम ये जानना चाहते हैं कि शूटिंग के दौरान या फिर जब वो डांस करते थे या डायलॉग डिलीवरी होती थी तो उस वक्त वो कैसे होते थे, मतलब बड़े संजीदा होते
0: नहीं,
1: थे
0: वो
1: या
0: हंसूड़? बिल्कुल संजीदा इंसान नहीं थे वो, बिल्कुल हाँ? कॉमेडियन कैरेक्टर थे लाइफ के अंदर।
1: अच्छा।
0: हमेशा हंसते रहना और हंसी मजाक करते रहना, मैंने कभी उनको जिंदगी में सीरियस होते देखा ही नहीं।
1: संवाद अदायकी के
0: बाद वो एक कैरेक्टर है ना जो प्ले करते हैं, फिर वो वो जिस तरह का कैरेक्टर था वो फिल्मों में काफी संजीदगी के रोल किए हैं उन्होंने, और साजन बिना सुहागन में भी उनका बड़ा संजीदा रोल था, तो वो तो एक एक्टर की क्वालिटी है ना, उसको किस तरह से परफॉर्म करता है वो। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और उनके साथ एक और बात थी खास की नूतन जी भी सुपरस्टार थी, और वो भी सुपरस्टार थे, कभी दोनों ने साथ नहीं काम किया था। तो वो पहली फिल्म थी जब नूतन जी भी एक्चुअली रिटायर हो चुकी थी फिल्मों से, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये फिल्म कीजिए, तो जब वो सुपरस्टार थे दोनों ने साथ काम नहीं किया, जब वो स्टार नहीं रहे थे दोनों, फिर एक पिक्चर में साथ काम किया, सिर्फ वो पिक्चर गोल्डन जुबली।
1: पहले राजेंद्र कुमार एक सदाबहार नायक रहे, फिर चरित्र अभिनेता बने, फिर 80 के दशक में बने प्रोड्यूसर और अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म संसार में उतारा। फिल्म थी लव स्टोरी।

कुल मिलाकर भारतीय फिल्मों के अति भावुक ढांचे में से राजेंद्र कुमार के रूप में एक ऐसा नायक निकल कर आया था जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हमें हंसाया और रुलाया।

नायक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे जुड़े किसी दर्शन को याद किया जाए। और आपकी रेडियो सखी के लिए वो दर्शन ये है।

आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता राजेंद्र कुमार पर। शोध और आलेख आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन।

0: Hayat.
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल के साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील
2: जी।
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े, श्री मदन लाल कपूर, और न्यू कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सौरभ मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
2: जी।
3: तो मेरा जो ननिहाल था वो, चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसओन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था। और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता
2: और। जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
3: जी।
2: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
3: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
2: जी,
3: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
2: क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
3: जी।

0: सीमा जी निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो है वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कॉम्पिटिशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा।
1: जी, जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया,

0: शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी,
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि छोटा सा मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा छुट्टी है मैं करूंगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे।
0: हाँ।
1: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
0: फ्री नहीं
1: बैठ। हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या कौन सी स्क्रिप्ट है कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
0: जी,
1: और वही पुरी साहब में था।
0: जी।

0: पुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब है, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार। उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूं ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो
0: ये तो आपने क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जागने।
1: वाह बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
2: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
1: अच्छा, छुप कर? क्यों
2: छुप कर? ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
1: जी जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
2: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
2: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए। तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था, क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली।
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, तो जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन

0: अर्चन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: सुषमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे हो

0: मिस्टर कबाड़ी तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे, तो हम एक एक गांव में और शहरों में कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
1: क्या बात है?
0: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लिखने के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
1: तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू है? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
0: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो ताल पे बैठे हैं। अब जब आप ताल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी,
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होगी, लीलाबाई होंगी तो वो है ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
0: जी।
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे
1: बिल्कुल,
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5,00,000 रुपये आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने, खाप पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों

0: लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी, जी।
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
1: जी जी। एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
0: जी।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही हूँ, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है, है ना? आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं। और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको

0: एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
1: बिल्कुल,
0: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
1: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही, इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
0: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पलम सीखती
0: जी, जी।
1: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है, जीना जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है, तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए ताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूं कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी,
1: आउटस्पोकन
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते
1: है
0: ना।
1: तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं, शर्म।

0: होती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी।
0: चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी।

सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: श्री राजेश रेड्डी ने अपनी शायरी से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था
3: जी मंदाकिनी जी। और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी जाने माने कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्रा जी।
2: जी बिल्कुल।
3: इस कार्यक्रम में गण्यमान्यों की उपस्थिति थी जिनमें विविध भारती के सेवानिवृत्त कर्मचारी खास तौर से कमला कुंदर जी आई थी, कार्यक्रम अधिकारी कमलेश पाठक जी उपस्थित थी,
2: बिल्कुल
3: सेवानिवृत्त उद्घोषिका निम्मी मिश्रा जी उपस्थित थी।
2: जी हाँ।
3: और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेड्डी साहब का साक्षात्कार किया था हम सबके चहेते उद्घोषक यूनुस खान ने।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो विविधा में आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं इस विशेष बातचीत के संपादित अंश। नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी लोगों का विविध भारती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं

0: की सृजन करना आमतौर पर नवीनता या नवाचार का संकेत होता है, तो विविध भारती ने सृजन भारती के जरिए नवाचार करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प आगे चलता रहेगा। आज इसी कड़ी में सृजन भारती के माध्यम से हम जुड़ेंगे जाने माने शायर राजेश रेड्डी साहब और हमारी मुख्य अतिथि कवयित्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्र जी से। शायर जिंदगी की आम समस्याओं को सरलता से कह देने वाले होते हैं। रेड्डी साहब विविध भारती में केंद्र निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और खासतौर से मुझे खुशी है आज की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। एक शानदार शख्सियत और एक संजीदा शायर राजेश रेड्डी साहब उन शायरों में से हैं जिन्होंने गजल की नई पहचान को और मजबूत किया है। आपकी गजल को जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज दी है और आपके तीन संग्रह आ चुके हैं उड़ान, आसमान से आगे और वजूद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि रेड्डी जी अपने ही घर में लौटे हैं। विविध भारती में बहुत सारा वक्त रेड्डी जी के साथ बीता है और बहुत सारी यादें हैं। इस आयोजन का नाम हमने रखा है ये जो जिंदगी की किताब है, ये इसलिए क्योंकि ये रेड्डी जी की एक बहुत ही मशहूर गजल जिसे जगजीत जी ने गाया है। तो रेड्डी जी की गजलों की खासियत ये है कि उनकी गजलों का हर शेर बहुत वजनदार हुआ करता है और वो पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन गजलों के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत रेड्डी जी आपका। आज आपसे बातचीत तो करेंगे ही, साथ में आपके अशार भी सुनेंगे, तो यहाँ बहुत सारे पुराने साथी आपके समय के भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती में अपने घर में लौटते हुए?
2: नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मैं तकरीबन 14 साल बाद लौटा हूँ।
1: क्या बात है, वनवास खत्म हुआ है।
2: रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार दाखिल हुआ विविध भारती में।
1: वाह,
2: और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा परिवार जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, निमी जी, कमलेश जी, कमला जी और यूनुस और ममता, तो उस जमाने में भी खूब हमारे साथ एक्टिव रहे। पूरी टीम का जो क्रिएटिव टीम का जो हिस्सा थे बड़े, जिनके बल पर हम बहुत कुछ सोच पाए कर पाए। अब मेरा सौभाग्य था, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जो विविध भारती का एक मेरे अपने करियर का आखिरी दौर था, लेकिन मेरे अपने करियर का एक पीक भी था वो, कि जिसे मैं अपने अच्छी टीम के साथ और भरपूर टीम के साथ जिन्होंने अपना 100% जो हम सोचते थे उसके साथ किया और लोगों ने पसंद किया और विविध भारती की टीम को, विविध भारती के इस पूरे परिसर को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज ये फिर मौका मिला मुझे।
1: क्या बात है सर, किसी एक गजल से शुरू करते हैं ताकि एक महफिल जो है उसकी एक बुनियाद बन जाए।
2: तरनुम से पेश करता हूं शुरू में ही ये गजल। जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गजलें गाई लेकिन ये गजल मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये उनके आखिरी एल्बम की पहली गजल है जो रिकॉर्ड हुई, लेकिन रिलीज होने से पहले ही एल्बम वो इस दुनिया से चले गए। तो उनकी याद में, उनके सम्मान में मैं ये गजल पेश कर रहा हूं। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान।

0: क्या बात है।
1: इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। खशिर जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
0: बाबा
1: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान
0: क्या
1: बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ये शेर देखें जिंदगी का क्रम,
0: इरशाद
1: इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान
0: वाह वाह
1: बाकी है।
0: क्या बात।

0: हैं, और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर, हर युग का सच है लेकिन इस युग का कुछ ज्यादा सच है।
1: जी
0: सर देखें, सर कलम होंगे कल यहां उनके, अजय भाई, सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में जुबान।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काश के ये जगजीत जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ ये रिलीज हो जाए तो हम सभी के लिए ये एक अनमोल चीज बन जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी दास्तान को शुरू से शुरू करते हैं। जयपुर में वो कौन सा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था? दीप्ति जी कहती हैं कि जब इश्क होता है तब लोग लिखते हैं।
2: जब दिल टूटता है
0: ये सवाल दीप्ति जी ने पिछली मुलाकात में भी पूछा था, एक गोष्ठी में। मेरे साथ ये हुआ कि दिल लगा तो फिर लगता ही चला गया। मतलब ये था कि हम लोग एमए के साथ थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके साहस ने इस सपने को सच बनाया
1: जी,
0: और अब वो मेरी अर्धांगिनी है, और हम अब मेरी जो सृजन यात्रा में उनका बड़ा योगदान है। मुझे उन्होंने घर की जिम्मेदारियों से एक तरह से मुक्त रखा है, अपना लिखना पढ़ना मैं करता रहता हूँ, तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा वो है, सहयोग भी एहसान भी। तो दिल टूटने का जवाब यह है।
1: उनके लिए कुछ लिखा है सर आपने?
0: पढ़ दूं? ये एक मेरी शुरुआत गीत से हुई थी वो, और फिर बाद में गजल में आया, तो ये शुरुआती गीतों में से एक है। सूरज के ढलते ही मैंने कल शाम, सूरज के ढलते ही मैंने कल शाम, अधरों से पत्र लिखा अधरों के नाम।
1: वाह वाह वाह वाह,

0: सावन को बांध लिया अलकों में, तुमने क्यों सावन को बांध लिया अलकों में, देखो तो रूठ गए भंवरों के गीत मधुर।
1: वाह वाह।
0: तुमने क्यों सावन को बांध लिया अलकों में, देखो तो रूठ गए भंवरों के गीत मधुर। मौसम ने भेजा है अपना पैगाम।
1: क्या बात है।
0: अधरों से पत्र लिखा अधरों के नाम।
1: वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। आपने अभी ये एक जिक्र किया कि गीतों के जरिए आपने लेखन की दुनिया में प्रवेश किया था। मुझे ये पता है कि एक गीत आपका ऐसा है जो नीरज जी से बड़ी प्रशंसा उस गीत ने पाई थी, हम चाहते हैं कि उसका जिक्र यहाँ हो।
0: तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ। ये गीत मैंने जब मैं शुरुआत में गीत लिख रहा था जयपुर में मंचों पर कवि सम्मेलन में जा रहा था, तो ये गीत मैंने उदयपुर के कवि सम्मेलन में पढ़ा था, जहाँ नीरज जी उस वक्त उनकी क्या शान थी और क्या जलवा था। तो उन्होंने ये वो मुख्य कवि थे और मैं एक तरफ से शुरुआती उन लोगों में से था। तो ये गीत जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और एक सम्मान और एक प्यार एक आशीर्वाद मुझे दिया। तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ। जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है, जिंदगी की बस्ती में

0: मुश्किलों का मेला है, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं से, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं से। कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं से,
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं से, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला है।
1: वाह, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला है।

0: वाह क्या बात है, क्या बात है। विविध भारती की आपके दौर की बात कर ली जाए, रेडियो का जो आपका सफर है आकाशवाणी का, उसमें आज मुझे एक दिलचस्प बात ये पता चली कि आपने समंदर के किनारे भी काम किया, रेगिस्तान में भी काम किया, पहाड़ों पर भी काम किया। तो विविध भारती का जो मामला है, विविध भारती में आप लगातार कई बार रहे और इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो हैं आपने शुरू की, जैसे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है वो आपकी देन है, सरगम के सितारे आपकी देन है, यूथ एक्सप्रेस गुलदस्ता है और सखी सहेली सर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। हमारे कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जिक्र कर लूं कि यहाँ हमारी भूतपूर्व उद्घोषिका निमी जी मौजूद है और उसके अलावा गोपाल सिंह नेपाली जी की बेटी कमला कुंदर जो कि विविध भारती में हमारी साथी थी, कमलेश पाठक जी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर थी, ये सारे पुराने लोग यहाँ एक साथ मौजूद हैं और आपके साथ ये सारे काम भी कर चुके हैं। तो विविध भारती से जुड़ी कुछ यादें बांटिए।
1: विविध भारती से जुड़ी तो यादें ही यादें हैं, मतलब और खूब यादें हैं। मेरा बेहतर और बेहतरीन समय आकाशवाणी में अगर कहीं गुजरा है तो या तो जयपुर और ये फिर विविध भारती। ये वो चैनल है जिसे सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, जिसको सुनते सुनते मैंने गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा और कभी कल्पना नहीं की थी कि उसी चैनल को जिसको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा हूँ मैं कभी आऊँगा और इस चैनल में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उसको निभाऊंगा।
0: क्या बात,
1: तो ये
0: क्या बात?
1: तो ये सौभाग्य है मेरा और मुझे तीन अलग अलग अवसरों पर विविध भारती में काम करने का मौका मिला और हर बार बहुत अच्छी टीम मिली जिनकी दो सदस्य तो अभी भी बहुत सक्रिय हैं, यूनुस और ममता। बाकी भी वो दौर जब मैं 12 में रिटायर हुआ उससे पहले का जो दौर था बहुत क्रीम टैलेंट था विविध भारती का, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग और अपना 100% देने वाले लोग। तो विविध भारती से विदा होते हुए मैं गर्व भी महसूस कर रहा था, खुशी भी महसूस कर रहा था, मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किस आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सामने रही। मैं बहुत शान के साथ, बहुत खुशी के साथ, संतोष के साथ यहाँ से गया हूँ।
0: वापस शायरी की दुनिया की तरफ लौटते हैं। अब मैं आपसे उस गजल की फरमाइश कर रहा हूँ जिसको सुनने के लिए सब लोग यहाँ पर जमा है, जिसे पंकज उधास ने गा के बहुत मशहूर किया था।
1: ये वो गजल है जिसने सारी दुनिया में मेरी पहचान बनाई या मुझे पहुंचाया। आज भी मतलब मैं जाता हूं उससे पहले ये गजल वहां होती है और लोग इसके लिए कहते हैं कि वो जरूर सुनाएं। मैं पेश कर रहा हूं यूनुस।
0: इरशाद, इरशाद।
1: यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। रिखाशे
0: इरशाद।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम

0: मुसा बच्चा
1: वाह वाह वाह वाह
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है
2: बहुत शुक्रिया
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है
2: और ये शेर आज के इंसान के नाम
1: इरशाद
0: न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका
1: वाह
0: न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है खिलौना है
2: शुक्रिया और ये गजल का आखिरी शेर खास शेर वो बच्चे वाला शेर जितना प्यार से सुना गया ये भी उतना ही मेरे हिसाब से सच्चा शेर है अमीर हो गरीब हो किसी मुल्क का इंसान हो एक पल आता है कि वो कहता है बहुत हो गया ऊपर वाले वापस बुला ले लेकिन जब वो पल आता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है शेर है देखें
0: यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान
1: वाह वाह
0: अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से
1: क्या बात है
0: अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है
1: क्या बात है इस गजल से जुड़ी हुई एक बड़ी यादगार घटना है उसके बारे में जरा बताइए
2: ये गजल पंकज जी ने गाई दुनिया में पहुंची इसके साथ दो घटनाएं हैं
1: अच्छा दो है जी मुझे मैंने एक सोचा था जी जी
2: एक घटना तो यह कि जब पंकज जी ने गाई उस वक्त एक सिर्फ दूरदर्शन ही था ये प्राइवेट चैनल वगैरह तो उस जमाने में थे ही नहीं तो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आरोही
1: जी जी दूरदर्शन उस का
2: तो उसमें ये सुगम संगीत के एक से एक प्रोग्राम आते थे जिसमें जगजीत जी पंकज जी कौन कौन नहीं आया उसमें तो ये गजल जब उन्होंने गाई तो उस वक्त स्क्रीन पे राइटर का नाम नहीं आता था या नहीं आया था उस दिन ये जो भी है तो ये गजल गाई मेरा एक जयपुर का पुराना दोस्त था वो अपने घर में जैसे सब लोग देख रहे थे देख रहा था प्रोग्राम तो ये जब गजल आई तो दीप्ति जी वो उसका रिएक्शन ही होता है वो उसने मुझे बहुत बाद में बताया जब मिला बोले हम लोग देख रहे थे और बैठ के फिर मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी लोग क्या खा के गजल कहते हैं इस तरह की
1: वाह वाह पाकिस्तानी लोग
2: तो वो ये सोच नहीं पा रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शायर इस तरह की गजल कह सकता है ये कही होगी तो बहुत बाद में बोला और दूसरी बात ये कि जब ये पंकज दास जी सूरत में कंसर्ट में सुनाने गए गजल मतलब एक कंसर्ट उनका चल रहा था मजरू सुल्तानपुर साहब से चीफ गेस्ट थे जैसा आज ये दीप्ति जी हैं मजरू सुल्तानपुर ऑडियंस में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये गजल सुनाना शुरू किया ये गजल अपनी जब ये शेर आया तो मजरू साहब ने कहा कि पंकज फिर पढ़ो तो दो तीन बार उन्होंने पढ़वाया तो जब ये ऐसा कहा जाता है मुशायरे में या संगीत में तो ये सुनाने वाले गाने वालों को लगता है कि कहीं कुछ गलत गा दिया मैंने या गलत बोल दिया पहले तलफ़ुज़ गलत हो गया लाइन गलत बोल दी कुछ तो कुछ गलत हो गया तभी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि फिर पढ़ो तो उन्होंने फिर पढ़ दिया तीन बार ये शेर पढ़ा फिर उन्होंने बताया पंकज जी ने बताया मुझे कि जब ग्रीन रूम में आए

0: मजरू साहब, तो उन्होंने कहा कि ये गजल किसकी थी जो तुम सुने? तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, कि बॉम्बे के एक नौजवान शायर हैं, तो उनका यह है। तो बोले मेरी तरफ से उस नौजवान शायर को मुबारकबाद दे रहे, नई तरह की गजल है, अलग तरह की गजल है।
1: बहुत क्या बात है, मजरू साहब की तरफ से ये बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जगजीत सिंह के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं।
0: नहीं, जगजीत जी का प्यार मुझे बहुत मिला, और ऐसा प्यार मिला कि वो शायद किसी शायर के नसीब में ना हो। वो जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, वो ये खास बात यह है, मेरे पहला संग्रह गजल का उड़ान आया, दूसरा जो आसमान से आगे किताब आनी थी, तो मैंने जगजीत जी को फोन किया कि जगजीत जी मैं चाहता हूँ कि इसका जो लोकार्पण या किताब का विमोचन जो भी कहते हैं ना, तो मैं आपके हाथों से करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अलग से प्रोग्राम या डेट वेट क्यों करते हो? नेहरू सेंटर में मेरा उनका केयर का एक सेंटर प्रोग्राम हुआ करता हर साल, कैंसर पीड़ितों के लिए वो कंसर्ट करते थे, तो मेरा वो फला जिनको वो नेहरू सेंटर प्रोग्राम है, उसी दिन आ जाओ, किताब ले आओ, फिर अपन कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा कि, और मैं किताब लेके चला गया वहाँ पे, लेकिन ये था कि वो बुलाएंगे और स्टेज पे सब हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, और फिर तुम किताब लेके आ जाना, और फिर अपन उसका। तो मैं ऑडियंस में बैठ गया जा करके, किताब लेकर के अपनी सारी, और उन्होंने वो गजल गाई, कंसर्ट चल रहा है उनका, उसमें दूसरी तीसरी गजल गाई, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं,
1: वाह
0: तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो ये गजल गाई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो गजल मैंने गाई, ये हमारे प्यारे दोस्त शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और इत्तेफाक से वो यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और आज उनकी किताब का भी हम चाहेंगे कि हो जाए। तो मैं किताब लेके गया, स्टेज पर गया, उन्होंने रिव्यू खोली, और सबके सामने, ऑडियंस के सामने वो जो होता है एक तरीका, वो किया, क्लैपिंग वैपिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने रोका इशारा, बोले राजेश रुकिए। तो मैंने कहा पता नहीं आप क्या बाकी है। तो फिर उन्होंने, उनका म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, मतलब गजलें चल रही है, सुर साजिंदे स्टेज से सब, तो उन्होंने साउंड वाले को बोला कि ये एक माइक इधर लगाओ, स्टैंडिंग माइक। तो मैं, तो वो एक माइक लगाया, और फिर उन्होंने कहा कि राजेश वो गजल सुनाइए, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जो आखिर में रिकॉर्ड किया।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: कि जब मैंने गजल शुरू की, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, तो मैं, मैंने ये पढ़ाई है, तो जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए,
1: वो गाने लगे, वाह वाह वाह,
0: वो गाने लगे। किसी शायर को इतना बड़ा ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद, प्यार क्या होगा कि वो पढ़ रहा है और उसी वक्त वो सिंगर।
1: क्या बात है, अनमोल यादें, शानदार शानदार। यहाँ मुझे लगता है कि आप, आपसे कुछ सुना जाए अब वापस।
0: तो ये शेर मतलब देखें, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं,
1: वाह
0: मेरी दुआ है अपने बारे में, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात।
0: अगर आप खुद को इस स्वीकार स्वीकृत नहीं है, तो फिर मतलब क्या बाकी चीज होगा।
1: वाह,
0: ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। ऋषि देखें खास
1: इरशाद,
0: बहाना कोई तो ऐ ज़िंदगी दे,

0: से घर दुनिया निकल जाए,
1: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
0: मैं अपने आप में भरपूर।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है, क्या बात है, क्या बात है।
0: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं, ये कब चाह के मैं।
2: और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर
1: इरशाद,
2: आईने पे बहुत शेर आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग,
0: ये कब चाह के मैं न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं।
1: वाह, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चक ना चू।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, इसे फिर पढ़िए। वाह वाह वाह वाह,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं, ये कब चाह के मैं मशहूर हो जाऊं।
1: शुक्रिया। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अब ऑडियंस के लिए तो फोरम ओपन करता हूं, आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो ये माइक है और आप पूछ सकते हैं।
3: सर मेरा नाम धीरज पुरोहित है। सर मैं शायरी से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न पूछ रहा हूं और मुझे उसका मैं क्षमा चाहते हुए कूटनीतिक नहीं लेकिन सच्चा उत्तर चाहिए। दिल्ली के एक शायर हैं, उनका शेर इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि शायद ये शेर की श्रेणी में नहीं है। उनका शेर है कि कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। सर ये क्या सही है, यानी कोई भी मिठाई मिठाई नहीं होती, यानी जो मिठाई होती है वो सब एक ही कैटेगरी की होती है, उनमें भी तो विविधताएं होती है ना, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं।
1: बड़ा मुश्किल सवाल है
3: लेकिन सर मैं आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से जरूर।
2: नहीं बिल्कुल सही है पूरे जी, वो शेर उसकी सच्चाई अलग है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अच्छे गायक बुरे गायक में फर्क होता है, अच्छे शायर बुरे शायर में फर्क होता है, अच्छे कहानीकार बुरे कहानीकार में फर्क होता है, हर अच्छे अच्छे खिलाड़ी और बुरे खिलाड़ी में फर्क होता है। तो लेवल और स्तर का तो फर्क होता है, मतलब जैसे सुर में गा देने को सिर्फ गाना नहीं बोलते, गाने में असर होना चाहिए।
3: असर,
1: क्या प्यारी बात है
2: ना, गाने में असर होना चाहिए।
3: जी सर, आपके आपके उत्तर का तात्पर्य यह है कि वो मुकम्मल शेर तो है लेकिन शेरों में भी वर्गीकरण जरूर है,
2: जिसमें असर है वही सच्चा शेर।
3: जी जी
4: सर, से क्या सवाल करूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने इतने सुंदर गीतों से अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके बाद फिर कभी गीत लिखे ही नहीं, और क्यों?
2: हाँ नहीं, बहुत सही सवाल है कमलेश जी। मैं शुरू में मंच पे गीत पढ़ता था, जो नीरज जी वाली घटना मैंने आपको बताई, मंचों पे राजस्थान भर में घूमता था, बाहर भी गया। लेकिन जयपुर में जो हम उम्र लोग होते हैं, जिसमें हिंदी वाले भी होते हैं, उर्दू वाले भी होते हैं, आपका उठना बैठना होता है, हाँ, तो जो मेरे हम उम्र जो शायद दोस्त थे जो जिनके साथ उठना बैठना भी था, तो वो उनको सुनते सुनते भी फिर वो उनकी कुछ गजलें सुन रहा, और फिर कुछ मुशायरे वहाँ पे जो अटेंड किए, जिसमें बड़े बड़े शायर जो है ना, जयपुर में बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे, और ये सब मजरू सुल्तानपुरी साहब, कैफी आजमी साहब, निदा साहब, बशीर बद्र, शहरयार, ये सब बड़े बड़े शायर वहाँ पे आते रहे। तो वो जब मैंने देखा कि दो मिसरों में पूरी बात हो जाती है, और गीत जो है ऐसा आसान भी नहीं है कि आप गीत से लेकर आसानी से शायरी में आ जाए और दो पंक्तियों में कहना शुरू कर दे, लेकिन वो उस विधा ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बांधा, मैंने उसमें कोशिश की और वो मेरे यार दोस्तों को सब हम उम्र लोगों को ठीक लगने लगी और बात कुछ जम गई, और फिर मैं वो कहने लगा तो फिर गजल का ही जादू मुझ पे सवार हो गया वो शेर कहने पे, तो वो मैंने की। तो फिर जब हुआ तो मैंने गजल को अपनाया और फिर शायद गजल ने मुझे अपना लिया। जी

0: लिए मजबूर हो
1: जाऊं।
0: बहुत शुक्रिया। ये कब चाह कि मैं ऋषेर
1: इरशाद,
0: अगर हम अपने आप में टटोलें तो हम खुद अपने आप में कितना है, हम एक बहुत कुछ चीजें समझ चुकी हैं और हम खुद कितने रह गए ये देखें। ये कब चाह कि मैं मेरे

0: क्या बात है।
1: नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई नया नया शायर बनना चाहता है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि कविताएं बहुत से लोग लिखते हैं और वो बहुत ही अलग अलग तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं, वैसे ही शेर भी बहुत ही अजीब तरीके के हो रहे हैं जिनको शेर शायद नहीं भी बोला जा सकता है, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा में बढ़ सके।
0: ये लड़की अपने लिए पूछ रही है कैजुअल अनाउंसर है नेहा।
2: अच्छा नेहा,
0: नेहा शर्मा।
2: हाँ नेहा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और खासतौर से आपकी जनरेशन के लिए इस दौर में कुछ चीजें आसान भी हुई हैं और कुछ चीजें गलत भी हुई हैं। ये सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें ओपन माइक और सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर है ना, और व्हाट्सएप और ये सब, इसमें आपने, आपका शौक है सिर्फ, और आपने दो लाइन लिखी और उनको मान लिया कि, जैसे दीप्ति जी ने कहा कि मान लिया कि ये शेर है बस, और उसको आपने पोस्ट भी कर दिया, और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, हम उम्र लोग हैं या परिचित लोग हैं, वो उस पर वाह-वाह भी कर देंगे है ना, और वो दाद मिलना भी शुरू हो गई और सारा कुछ हो, और उससे एक गलत फहमी पैदा हो गई कि मैं तो एक्सेप्ट कर ली गई है, कर लिया गया, मैं शायर हूँ। जब हम जैसे लोग शुरू हुए थे तो ये सब नहीं था, हम सिर्फ गोष्ठी में होते थे, एक दूसरे को सुनते थे, सुनाते थे, और उसके बाद आत्मविश्वास जैसा कुछ चीज़ आती थी, फिर अखबारों को भेजते थे, पत्रिकाओं में भेजते थे, फिर वहाँ एक संपादक जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी जो उसको देखता था कि वाकई ये गज़ल है या नहीं है, तो अब तो संपादक भी गायब हो गए, तो ये इतना आसान नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोशल मीडिया ने आसान तो कर दी हैं, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और लगातार पढ़ना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए, ये जुनून का काम है, और वो अगर जुनून है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे।
0: जी रेडियो की तरफ वापस लौट रहा हूँ सवाल के जरिए। जब अचानक ये तय हुआ कि सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होना है, वो दिन याद है सर आपको?
2: जी मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन वो जमाना याद है और बिल्कुल हंगामों वाले दिन थे
0: बिल्कुल अचानक सिग्नेचर फिल्म बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है,
2: डेट तय हो जाती है कि फला से शुरू करना,
0: लॉन्च होना है बस, और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी,
2: तो उसके बाद फिर वो सिलसिला सिग्नेचर ट्यून से लेके यूनुस है और राजेश अपने जोशी,
0: राकेश जोशी,
2: राकेश जोशी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ये दोनों लोग जो थे मशीनों के मास्टर और सिग्नेचर ट्यून के तो एक्सपर्ट हैं दोनों के दोनों, राकेश जी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये विविध भारती की जितनी सिग्नेचर ट्यून्स हैं ये इन दोनों का करिश्मा है, इन दोनों का कमाल है।
0: जी जी, जी
2: और
0: शुक्रिया।
2: तो फिर सिग्नेचर ट्यून भी बनी और सब चीजें सिलसिला शुरू हुआ और बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम शुरू हुआ और पहले ही प्रोग्राम से लोगों का दिल लोगों ने जीत लिया। थैंक यू।
0: बिल्कुल, यहाँ कमलेश जी मौजूद हैं, मुझे लगता है कि मैं अपना माइक उनको देता हूँ, सखी सहेली की शुरुआती याद के बारे में वो भी अपनी कुछ बात कहे।
3: सखी सहेली की याद तो ऐसी है कि वो कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, लोगों की चिट्ठियां आना शुरू हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है प्रोग्राम, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। और दूसरी एक बड़ी जो खास मेरे साथ घटना घटी, किसी ने चिट्ठी लिखी कि अगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो कमलेश पाठक प्रोड्यूसर कैसे है उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कमलेश पाठक खुद प्रोग्राम में बैठे एक बार तो बताएं कि पुरुष नहीं है, वे महिला है। और जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लगा मेरा थोड़ा लोकल टच है बोलने में तो शायद पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद बाद में ऐसा हुआ कि उनको मेरा बोलना ही अच्छा लगने लगा और बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी कि आपका जो लोकल टच है, जो क्योंकि विविध भारती बहुत रिमोट में भी सुना जाता था ज्यादातर, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा।
4: आप बताइए। मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। कई बार मैं जब रिटायर हो गई उसके बाद भी मुझे प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था, वो जमाना ऐसा था कि रिटायर्ड लोगों को भी बुलाते थे।
5: हम लोग रेडियो की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में आते हैं, और सवाल मेरा ये है कि राजेश जी आप पूरे विश्व में मुशायरे पढ़ रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, बहुत नाम है आपका हर जगह, लेकिन ये मुशायरों की जो दुनिया है, पहली बात तो ये कि इसमें प्रवेश कैसे हुआ, दूसरी बात ये कि इतना साफ सुथरा लिखते हैं आप, तो वहां कैसे जगह मिली?
0: क्या प्यारा सवाल है, बहुत सही, धन्यवाद।

0: दीप्ति जी, मैंने अब नेहा को जवाब देते हुए जो बात कही कि हमने जिस दौर में शुरू किया, हमारी ग्रूमिंग, हमारी स्कूलिंग कहना चाहिए शायरी में भी कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त अदाकारी का कोई काम ही नहीं था। मतलब ये अदाकारी शुरू हुई है बहुत बाद में जाकर के। जो मैंने नाम बताया आपको, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, बशीर बद्र, निदा फाजली, तो ये हमारे बड़े लोग थे, सीने गुलाम रब्बानी ताबा, तो ऐसे लोगों को तो सुन सुन के हम स्टेज की तरफ आकर्षित हुए
1: जी।
0: तो इनकी कोई अदाकारी नहीं, शायरी है, प्योर शायरी है ना। और खुमार साहब तरनुम के इतने बड़े बादशाह
1: जी
0: है, मजरू साहब भी तरनुम से सुनाते थे। तो ये हुआ। और फिर जो आपने कहा ना कि एंट्री आपकी कैसे हुई, तो मेरी एंट्री तो गीत से हो गई थी मंच पे, तो मंच का विश्वास जो आ गया था, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, और ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था गीत के। जयपुर में जो मेरा बड़ा मुशायरा हुआ, जिस मेरी एंट्री हुई और जिससे मुझे सब जगह जाने का एक तरह से वो पासपोर्ट मिला, वो था नेहरू सेंटर का मुशायरा, और निदा साहब ने उसकी निजामत की थी। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया नेहरू सेंटर के मुशायरे में। ये 87 की बात है, 86 में बॉम्बे आया, 87 में नेहरू सेंटर का बड़ा मुशायरा जिसमें निदा साहब ने संचालन किया, और मैं उसके शुरुआती शायरों में से था। उस वक्त मंच पर सारे अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, खुमार बाराबंकी, निदा साहब, बशीर बद्र, मुमताज राशिद, जफर गोरखपुरी, कोई बड़ा नाम लीजिए जो नेहरू सेंटर का मुशायरा ऐसा होता था, बड़ा मुशायरा।
1: जी जी।
0: और सुनने वालों में आपको हैरानी होगी, सुनने वाले में होते थे और थे उस वक्त दिलीप कुमार,
1: वाह,
0: अजीत फिल्म एक्टर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, तो ऑडियंस खचाखच भरा हुआ नेहरू सेंटर, ये हर साल का उनका था। तो और मैं बिल्कुल बॉम्बे में, एक तरह से मेरी शुरुआत ही थी, निदा साहब ने मुझे सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मौका दिया, वो पहली गजल पढ़ी, और वो गजल मुझे दो बार सुनी गई, मतलब बार बार मुझे प्यार मिला उस गजल ने, इतना प्यार दिया, इतनी पहचान दी, इतना आत्मविश्वास दिया, और उससे फिर वो एक पहचान बात से बात निकलती है, लोगों से लोगों तक पहुंचती है, और वो उसके कैसेट वगैरह, जैसे दुबई के कैसेट आने लगे, इधर इधर के कैसेट दुबई जाते थे, तो एक बात पहुंच गई कि भैया ये शायर है जो अच्छा पढ़ता भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से एक एंट्री हुई। तो मुझे नाटक करने की या अदाकारी करने की और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और अब तक किया हुआ है।
1: बिल्कुल सर। तो उसी गंभीरता से अब आपकी अगली गजल हम सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली? जो नेहरू सेंटर में सुनाई थी।
0: नहीं, वो सुना चुका पहले, वो जाने
1: कितनी उड़ान, बाकी है। हाँ, वही थी।
0: हाँ।
1: तो कोई और गजल सुनते।
0: हाँ, ये गजल भी मेरे लिए खास गजल है। हाँ, तो ये उर्दू में बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहादुर शाह जफर के जमाने से मिलकर हो रही है। बड़े बड़े उस्ताद भी जो है वो तरही गजल कहते हैं, यानी कि एक मीटर दिया जाता है और उसमें हर एक शायर अपने अपनी गजल कह के लाता है। तो रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी, जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो उन्होंने एक तरही मुशायरा कराया। तो एक मीटर देते हैं, एक पंक्ति देते हैं, लाइन देते हैं, उस पर अब हर शायर अपनी अपनी गजल लेके आता है। तो हिंदुस्तान भर के शायर वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिनिधि शायर थे, मुंबई से मैं गया था, तो मैंने ये गजल कही, और मेरा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती की ये गजल वहाँ मुझसे बहुत प्यार से दो बार सुनी गई, और सब दिग्गज मौजूद थे उर्दू दुनिया के वहाँ रामपुर में, तो उसने एक मुझे बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने, कहां से हम,
1: क्या
0: अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने, कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम। और ये शेर, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, नाराज है जमी से खफा आसमान से हम।
1: वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया। अब क्या बताएं तू, और ये गजल का खास शेर, एक लफ्ज शब्द होता है शराब, एक तो शराब है जो कि बहुत लोग पीते हैं, एक शराब यानी

0: जो मृग जल होता है यानी रेगिस्तान में पानी होता नहीं लेकिन पानी जैसा दिखता है, मिराज जिसे बोलते हैं, मृग मरीची का है ना जो कुछ है। हाँ तो अब ये शेर देखें, अब क्या बताएं टूटे हैं, शेर अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास,
1: अब तो शराब से ही बुझाने लगे हैं प्यास,
0: अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकी का गुमास।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसे फिर बढ़िए।
0: अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकी का गुमास।

0: अब तो शराब से ही बुझाने लगे हैं प्यास।
1: अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमास।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसे फिर बढ़िया।
1: अब तो शराब ही से

0: गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: शुक्रिया। अब क्या बताएं। और एक अलग सा शेर है, एक जमाना था कि टीवी पर अक्सर वो नार्को टेस्ट का बहुत जोर था, इसका नार्को टेस्ट, इसका नार्को, ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, अपराधियों का ये अक्सर होता था। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने एक मशीन हर इंसान के बॉडी में फिट की हुई है जो ये बताती है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये शेर में ढल गया, देखें
1: इरशाद।
0: अब क्या बताए टूटे कितने कहां से हम, लेकिन हमारी आंखों ने, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
0: अब क्या बताए टूट। और गजल का आखिरी शेर, अब क्या बताए टूटे हैं गम बिक रहे थे मेले में।
1: वाह।
0: गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर।
1: क्या बात है, क्या बात है। गम बिक रहे थे,
0: गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है।
0: अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से।
1: बहुत शानदार गजल आपने सुनाई। और आपकी इस पूरी यात्रा में आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जिंदगी में क्या महत्व आकाशवाणी का रहा है, और आकाशवाणी की इस 90 बरस की यात्रा में ये जो पूरी यात्रा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है।
0: मैं आकाशवाणी परिवार का सदस्य हूं और रहूंगा। इसी ने मुझे एक सांस्कृतिक संस्था ने, जिसको सुन, मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस संस्थान में एक मामूली से कार्यक्रम, पहले मैं कैजुअल, युवाणी जब शुरू हुआ था जयपुर में, तो युवाणी का ऑडिशन देने गया था। एक युवाणी के आर्टिस्ट के तौर पर मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया, और वो सुख अलग ही था कि जब आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं और आपको ये लगे कि अब आप आकाशवाणी में कवि के रूप में और नाटक कलाकार के रूप में कि आपकी आवाज़ अब आकाशवाणी पे आएगी, वो एक अलग थ्रिल था, वो एक जमाना ही अलग था। तो मेरा तो सफर ही, हालांकि मैं रंगमंच, पत्रकारिता सब कुछ की मैंने, लेकिन मेरा क्रिएटिव सफर जो, जिसमें संगीत भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें लेखन भी है और कार्यक्रमों का अलग अलग संयोजन भी है, तो मेरा जो क्रिएटिव जो सफर है वो शुरू से

0: जो मैंने इतना साल 1980 से लेकर 2012 तक गुजारा, अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर, और खास तौर से विविध भारती, और मैं जयपुर को याद करूंगा कि जयपुर ने मेरी नींव रखी और विविध भारती ने मुझे एक वो आकाश दिया कि मैं सब जगह अपनी बात, अपनी परिकल्पना को साकार कर सकूं। तो विविध भारती के अलावा मैं आकाशवाणी के 90 साल की बात करूं तो ये वो संस्थान है जो अगर दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई चीज पहुंचती है तो आकाशवाणी है। न अखबार पहुंचते हैं, टीवी तो बहुत बात की चीज है, और बाकी तो सोशल मीडिया तो खैर अभी अभी कल ही पैदा हुआ है सब कुछ। तो एक जमाना था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली कोई चीज थी तो या तो फिल्म थी या आकाशवाणी। फिल्म में पहुंचती थी और या आकाशवाणी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था, और आकाशवाणी के लिए आपको, जिसका सफर हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, बनाए रखने में, और आज भी जितनी रीच हमारे इस माध्यम की है शायद किसी माध्यम की नहीं है, और इस माध्यम को जितना सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए, और इसकी इज्जत की जाए और इसका एहसान माना जाए, 90 साल होने के बाद या होने पर इस आकाशवाणी के लिए अपना धन्यवाद भी देता हूँ, कृतार्थ भी उसका, और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शानदार महफिल आपके साथ रही है, और यूं लगता है जैसे बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चलते चलते आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे, आपके मन की गजल।
0: रंग मौसम का हरा था पहले पेड़ ये कितना घना था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले पेड़ ये कितना घना था पहले, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले पेड़ ये कितना घना था पहले। और ये शेर हम अक्सर घर के बुजुर्गों से कहते हैं कि आप रहने दें, आपको ये मालूम नहीं, आपको ये नहीं आता, हाँ आप इस, ये और जमाना है, हाँ अब ये नहीं चलता। और अब ये शेर देखें
1: जी,
0: हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी उसी मोड़ पे आएंगे
1: जी।
0: और ये शेर देखें आप, रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा,
1: वाह, जो नया है वो पुराना होगा,
0: जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया। जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और ये शेर खास तौर से हिंदुस्तान के लिए, मसाला कब थी इबादत गाहें,
1: वाह,
0: मसाला यानी प्रॉब्लम और इबादत गाहें हमारा पूजा स्थल, मसाला कब थी इबादत गाहें, दिल में इंसान के खुदा था पहले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मसाला कब थी इबादत गाहें, दिल में इंसान के खुदा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और ज़ुल्क़ आखिरी शेर
1: इरशाद,
0: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था।
1: ओ, हो, हो, हो, हो, हो।

0: और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है।
1: आप सुन रहे थे सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी थी मंदाकिनी जी आपने
2: जी, और धन्यवाद ज्ञापित किया था आपने यानी जयंत साहब ने।
1: और इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता
0: है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबुवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए कि कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय

0: कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में दो दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: फिल्में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक या दो नहीं कई सारे कलाकारों को याद करने वाले हैं। तो यादों की महफिल में बहुत सारे कलाकारों की यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन। नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल में हम लेकर आए हैं हमारी कुछ यादें कुछ अलग अलग कलाकारों के साथ। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की, किसी की जन्मदिवस है, किसी का पुण्यतिथि है, तो हम उन सभी कलाकार को याद कर रहे हैं। और आज ये फिल्मकार विमल राय का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा सजाए गए, पिरोए गए इन गीतों को।

हम सुन रहे थे विमल राय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र की बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एस जी वर्मन सचिन देववर्मन ने इसे गाया है और सचिन देववर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल।

0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी सदाबहार, सदा आपके साथ।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म दो बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए हम सुनते हैं एक और गीत जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: तो सजना

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को, हमने सुना विमल रॉय एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को, और अब हम चल रहे हैं आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे हैं झुक गया आसमान, फिल्म से सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ सजा हुआ है यह गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता
1: है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में आस का पंछी फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में हस

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला, फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्मदिवस है, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे अपनापन फिल्म से यह गीत सुलक्षणा पंडित किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में।

हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज में। और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 3 देशों की यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। आज से जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। नए टर्मिनल के संचालन के पहले दिन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहली उड़ान के यात्री को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इससे पहले बेंगलुरु से जोधपुर आई पहली फ्लाइट के सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के साथ केक काटकर उत्सव भी मनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर आने और यहां से जाने वाले प्रत्येक यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहर की समृद्ध संस्कृति और आत्मीयता का अनुभव होगा। ये टर्मिनल जोधपुर की नई पहचान और बढ़ती विकास यात्रा का मजबूत प्रतीक बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। ये योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश में

0: आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएंगी। आज पहले दिन पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी। ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की हैं। राजस्थान टेक्सटाइल और अपेरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। साथ ही 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा तथा 4 एस्पिरेशनल जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि ये सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। मौसम विभाग ने आज करीब 15 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बादलों के छंटने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: बताइए, हालांकि हमारे एक श्रोता ने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है, पर बाकी श्रोताओं को तो भी उत्तर देना बनता है। तो बताइए, अगर जीवन में अंक नहीं है तो जीवन कैसा होगा? चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव वर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे एक श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा की ओर से सुरीला सफर भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फलफलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है, और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं, और त्वरित फल के लालच में गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि अंक, वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है, भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है, और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा, और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा है। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी, प्यार दूरी भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं, बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है, और उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव और शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे तो, एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा, अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई, और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती, जरा विचार कीजिएगा। सभ्यता बहुत पुरानी है, जब विश्व कुछ नहीं जानता था,
तब भारत में महाभारत हो रही थी और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई है, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज की कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी, मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रुपए पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम बस बता दीजिए, इस गीत में अभिनेता कौन है, अभिनेता का नाम बताइए और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूं कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर या घड़ी में देखकर या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है, बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ और बताइए इस गीत के अभिनेता कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने

0: सही उत्तर दिया
1: मनोज कुमार जी, उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। दस अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, जीरो एंड वन। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सात नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि सात का अद्भुत महत्व है, सात दिन है, सात स्वर है, इंद्रधनुष के सात रंग है, सात महाद्वीप है, सात समुद्र है, सप्तर्षि सात है और विवाह के फेरे भी साथ होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी, पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव जरूर हुए, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि 9 उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है, कोई कहता है कि उन्हें 7 नंबर पसंद है, किसी को 8 पसंद है, किसी को 3 पसंद है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो, वो शून्य हो जाता है। और किसी को 6 पसंद है, किसी को कोई अंक 5, 25, 30, 29, कई सारे अंक पसंद है, किसी को 12, 21 पसंद है, किसी को एक अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि 13 अंक लोग गलत मानते हैं और 13 बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में 13 अंक को गलत माना ही नहीं गया। शायद किसी को 18 नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूँ क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूँ अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है, है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और यह भी बता दीजिए कि अगले गीत की ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे

अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आंख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील पद्म दस पद्म शंख महाशंख और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं और सागरोपम आयु की बात भी आती है। सागर छह सागर दस सागर पंद्रह सागर तैतीस सागर ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे दो खरब तक पता है एक खरब सौ अरब उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है खत्म ही नहीं होती ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है। महाभारत की युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे। और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चटैया जी ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है बेटी भी घर पर है गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है बैंक ऑफिसर है तो वो लिख रही है रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है और हंसते हुए कह रही है कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे तो मेरी जॉब का क्या होगा ये भी बड़ी चिंता है चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता करोड़ तक तो पता है उसके बाद खरब का भी पता है शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहां तक जाते हैं और कैसे बनते हैं। क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान कई सारी चीजों की बात आती थी तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो अंकों से ही बना हो ग्रंथ हो किताब हो कोई भी चीज हो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के वर्ग पहली भी एक आती है समाचार पत्र में उसमें भी अंकों की आते हैं तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहेली है इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

करो कितनी तीतर तीतर के दो आगे तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितनी।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज बहुत पसंद है, पूरी वादियां गूंजती हैं इस आवाज में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है, और एक ग्रंथ है आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना, इसमें खगोल शास्त्र, गणित, काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है, लीलावती ग्रंथ का फिर से बात आई है, और इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है, और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं, और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दश कुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित, मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं, मगर आज बच्चों को 1 2 3 तो आते हैं, पर हिंदी के अंक 1 2 3 4 ना पढ़ने में आते हैं ना लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है, और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है। और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है, और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणुविज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं, और पहला कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6 लाख पदे हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सभी इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे

में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हो, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हो। इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे। तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है। जी, पांच सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है।

तफावत ये हो गई कि आदमी कोणे का भी नहीं है। जी, पांच सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है। अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, पांच रुपया बारह आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देववर्मन का संगीत, और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना पांच पैसे का एक सिक्का और एक पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, छह पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखने आ रहे हो संभा कितने आदमी थे सरदार दो, देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूं क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है, वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न में आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

हम सुन रहे थे तीजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने, दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले, बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

0: place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newzoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा

0: तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका S. जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
3: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में S. जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। S. जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। S. जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि S. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय

0: समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबिएला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

थई तत आ थई थई तत मुरल की धुन सुन आई दाते जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्दिगनाथ दिग्दिगनाथ दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

दुनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नागिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न नच सग सगन का सगन का किट झट झट सग सगन का जी सगन नदा साधा किट सग सगन का साधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या कर साथ या थे या कर साथ या थे या कर।

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी,
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्टकार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं, ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाही गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल, एक पूरब को जाता है दूसरा पश्चिम को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं, जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर की पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों आप क्यों, ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या?
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी है यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।

0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
1: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे, मजा आ गया।
1: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
1: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
1: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
1: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
1: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
1: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
1: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ है?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहाँ से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानते हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो।
2: भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं हम, बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है,

0: पर मैं पूछती हूँ क्यों, आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगी?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो, ये क्या बात हुई? मैं तो हूं ही पहाड़न, पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो, ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है,
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिख में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़न जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूं।

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़का कर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी, घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करो मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं,
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
0: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
1: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
0: जमती थी? पता नहीं।
1: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
0: पूछिए।
1: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
0: जी।
1: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
0: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
1: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
0: रोज रोज कहां होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार

0: जाती है साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जुबान कट जाती है।
0: ले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है?
0: अरे तू क्या जाने। हाय हाय हाय, सच कहो मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं? अरे
1: नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चों, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देखने तो कोई अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
1: देख पल्लू तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियाँ बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले दो, दो से भले तीन।

0: अभी तक किताबों में घुसे हुए, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
0: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
0: अरे यार, मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
0: अरे रहने दे यार, अपने ये फिलोसफी आनी तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
0: अब छोड़ना छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
0: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है। मीनाक्षी,
0: सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती। प्रभाकर बाबू,
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ढूंढ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन?

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं, और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए, और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का, जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे, तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा

0: राव और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम नहीं, और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व्ड थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे।

0: ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा। ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे
0: वो,
1: ले सकते
0: हाँ,
1: थे।
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर
0: होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल

0: कम से कम वो काम कर पाते
1: अगर बिल्कुल, बिल्कुल.
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो. लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे. और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है, आप ये कर दीजिए. कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है. इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे. वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते. और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब. और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है. तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो. ओके. या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं. तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए.
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे वो याद रखे. ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल.
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं.
0: Exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में
0: छोड़ देना चाहिए
1: ऐसे समय.
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा. तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी.
1: ओहो.
0: और वो लाइन रुक ही नहीं रही थी. अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था. तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे.
0: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे. राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस. ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखाया है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे. पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो. कोई ना कोई वो याद निकालता ही है, और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने.
1: गजब.
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं. वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे. तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी. लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो. तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे.
0: एग्जैक्टली. और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो,

0: ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे

0: के दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वही मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी उस जमाने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
0: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
1: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
1: और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे
1: जी,
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है, और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला। हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उस

0: काफ़ी प्राइजेस मिलते थे, और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था, और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी जी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग,
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी।
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना, और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं।

0: की शुरुआत हो गई। और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर।

0: और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं तो सवेरे लेट उठते हैं तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपये कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: तो ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम

0: वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे. मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम. बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं.
1: क्या बात है रीमा जी. पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था. जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से. तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट. पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशोमान देखी अकीरा कुरोसावा की. और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए. मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म. ऐसा कुछ करना चाहिए. और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था. मैंने कहा हाँ करना था लेकिन अभी मुझे ये करना है. तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले. सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी. क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गया कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे. तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी. ओके
1: राइट.
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है. फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना. पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझमें भी है. तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ.
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था. तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है. तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए.
0: थैंक यू सो मच. ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं. पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: शुक्रिया.
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी. कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले. अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.
1: उजाले.

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फुलवारी।

फुलवारी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को सीमा आंटी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने कार्यक्रम फुलवारी में। आज फिर से हम लेकर आए हैं नई चर्चा, जानकारी और गीत संगीत। बच्चों आज की हमारी चर्चा का विषय है मोबाइल से रहें दूर, खेलें कूदें भरपूर। आज विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल फोन भी विज्ञान का एक अद्भुत उपहार है। इससे हम पढ़ सकते हैं, नई बातें सीख सकते हैं और दूर बैठे लोगों से बात भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, हर अच्छी चीज का सही समय और सही मात्रा में उपयोग ही लाभदायक होता है। आवश्यकता से अधिक मोबाइल का उपयोग हमारे लिए नुकसानदायक बन जाता है। प्यारे बच्चों, जरा सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती थी? बारिश में भीगने से, मिट्टी में खेलने से, दोस्तों के साथ दौड़ लगाने से, पतंग उड़ाने से, क्रिकेट खेलने से या लुका छुपी खेलने से? उन पलों में जो आनंद था वो किसी मोबाइल स्क्रीन पे नहीं मिल सकता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम लगातार मोबाइल देखते हैं तो हमारी आंखें थक जाती हैं, सिर दर्द होने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, रात को देर तक नींद नहीं आती, सुबह उठने में आलस आता है और धीरे धीरे हम अपने परिवार, दोस्तों और खेल के मैदान से भी दूर होने लगते हैं। बच्चों याद रखो, मोबाइल हमें जानकारी देता है लेकिन खेल हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। जब तुम मैदान में खेलते हो तो केवल खेल नहीं खेलते बल्कि जीवन के सबसे बड़े पाठ भी सीखते हो। क्रिकेट तुम्हें टीम वर्क सिखाता है, कबड्डी साहस सिखाती है, खो खो फुर्ती और एकाग्रता बढ़ाता है, फुटबॉल मिलजुल कर लक्ष्य प्राप्त करना सिखाता है और हारने पर धैर्य और जीतने पर विनम्रता का गुण भी खेल ही सिखाते हैं। बच्चों स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। तो ये शक्ति केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम और खेल कूद से ही प्राप्त होती है। हमारे देश के महान खिलाड़ी, चाहे वे क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स या अन्य खेलों के हों, वे घंटों मोबाइल देखकर महान नहीं बने। उन्होंने मैदान में पसीना बहाया, कठिन परिश्रम किया और अनुशासन का पालन किया, इसलिए वे आज पूरे देश का गौरव हैं। प्यारे बच्चों सोचो, यदि तुम प्रतिदिन केवल एक घंटा मोबाइल कम चलाओ और उसी समय खेलो, साइकिल चलाओ, योग करो, पेड़ पौधों की देखभाल करो या कोई नई कला सीखो, तो एक वर्ष बाद तुम कितने स्वस्थ, आत्मविश्वासी और खुश रहोगे। बच्चों मोबाइल की बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ती है ना, लेकिन हमारा शरीर और मन खेल कूद से अपने आप ही ऊर्जा से भर जाता है। मोबाइल एक अच्छी चीज है लेकिन तभी तक जब तक उसका उपयोग सीमित और सही उद्देश्य के लिए किया जाए। यदि आप घंटों मोबाइल पर गेम खेलते रहोगे या वीडियो देखते रहोगे तो आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नींद पूरी नहीं होगी और आपका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। बच्चों आपकी असली दुनिया मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन नहीं बल्कि खुला मैदान है। मैदान में दौड़ने का आनंद, दोस्तों के साथ खेलने की खुशी, हंसने गाने का मजा और नई नई चीजें सीखने का उत्साह किसी भी मोबाइल गेम से कहीं अधिक है। जब आप कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या कोई भी खेल खेलते हो

0: तो आपका शरीर मजबूत बनता है, मन प्रसन्न रहता है और आप अनुशासन, सहयोग और टीम भावना भी सीखते हैं। यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद भी करते हैं। तो बच्चों, आज मिलकर संकल्प लें कि हम मोबाइल का उपयोग केवल जरूरत के अनुसार करेंगे। हम हर दिन खेलेंगे, कूदेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। साथ ही अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि चलो मैदान की ओर चलें, नई उमंग के साथ चलें, मोबाइल को कुछ देर भूलें, खेलों से जीवन को फूलें, दौड़ेंगे, कूदेंगे, मुस्कुराएंगे और भारत का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। इसी के साथ बच्चों, आइए आप ही के कुछ दोस्तों के मुख से सुनते हैं कि वे मोबाइल के बारे में क्या सोचते हैं, उसका कितना इस्तेमाल करते हैं और कितना पता है उन्हें इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो आइए सुनते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है?
1: दिव्या।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: सेवेंथ।
0: और आपका बेटा?
2: सेजल।
0: आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: सिक्स्थ
0: में। तो आप लोग मोबाइल चलाते हो?
1: यस मैम।
0: और ग्राउंड में खेलने जाते हो?
1: यस
0: जाते हो। तो ग्राउंड में क्यों जाते हो?
1: उससे माइंड डेवलप होता है और अच्छा, मजा भी आता है।
0: मजा भी आता है, वहाँ दोस्तों से मिलते होगे आप।
1: यस।
0: तो आप रोज जाते हो ग्राउंड में?
1: यस।
0: कौन सा गेम खेलते हो आप?
1: बास्केटबॉल।
0: तो बास्केटबॉल खेलने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं?
2: हमारी हेल्थ अच्छी रहती है।
0: शाबाश।
1: स्टेमिना रहता है।
0: बहुत अच्छा।
2: शाबाश,
0: बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अच्छा, आपको एक तरफ मोबाइल मिले जिसमें गेम भी हो और एक आपको दोस्तों के साथ मैदान में खेलने को मिले, तो आप क्या चुनोगे?
1: दोस्तों के साथ मैदान में खेलना।
0: अच्छा, दोस्तों के साथ मैदान में खेलना। तो आपके और दोस्त भी आते हैं खेलने के लिए?
2: और
0: अच्छा, हाँ हाँ बोलो बेटा।
2: आंटी एक नहीं आती, वो फोन चलाती रहती है।
0: अच्छा, फोन ही चलाती रहती है? नहीं बेटा, फोन तो ज्यादा इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आपको मैं एक किस्सा बताऊं। एक बच्चा था, वो रोज स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाता था। पहले एक घंटा, फिर दो घंटे, फिर तीन घंटे। धीरे धीरे उसने बाहर खेलना ही छोड़ दिया। उसके दोस्त उससे दूर हो गए, पढ़ाई में उसके अंक कम आने लगे। एक दिन उसकी दादी ने कहा कि बेटा, मोबाइल तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारे दोस्तों को तुमसे दूर कर रहा है। तो उस दिन से उसने नियम बनाया कि पहले पढ़ाई, फिर एक घंटा मैदान में खेल और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मोबाइल। और कुछ ही दिनों में वो पहले से भी ज़्यादा खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी हो गया। तो बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
1: कि हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, खेलना चाहिए
0: और मोबाइल को अपनी लत नहीं बनानी चाहिए, आदत में नहीं लेना चाहिए, है ना। जरूरत पड़े तो मोबाइल लो, क्योंकि मोबाइल अच्छा तो है लेकिन जब उसका दुरुपयोग होता है तो वो खराब हो जाता है। तो आज से आप संकल्प लो कि हम मोबाइल से रहेंगे दूर,
3: खेलेंगे कूदेंगे भरपूर।
0: शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो अभी आपने सुनी बच्चों के मुख से बातें। इसी के साथ आइए अब आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो अभी बच्चों आपने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बच्चों आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बालू और धूल भरी आंधी से मुकाबला करने का दिवस, जिसे हर वर्ष 12 जुलाई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। बच्चों क्या आपने कभी तेज धूल भरी आंधी देखी है? जब अचानक तेज हवा चलती है, चारों ओर धूल उड़ने लगती है, आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सड़कें भी दिखाई नहीं देती, क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? बच्चों ऐसी धूल भरी आंधियां केवल

ही नहीं पैदा करती, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, खेती, पर्यावरण और दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। इसी समस्या के प्रति पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बालू और धूल भरी आंधी से मुकाबला करने का दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धूल भरी आंधियां आती क्यों हैं? तो बच्चों, इसके कई कारण हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, भूमि का बंजर होना, सूखा, जलवायु परिवर्तन और तेज हवाएं। जब जमीन पर हरियाली कम हो जाती है, तो मिट्टी ढीली होकर हवा के साथ उड़ने लगती है। ऐसी धूल भरी आंधियां केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, खेती और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी ये गहरा प्रभाव डालती हैं। बच्चों, हम सभी समस्या को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, मिट्टी को बचाने के उपाय अपनाने चाहिए और अपने आसपास स्वच्छ और हरित वातावरण बनाए रखना चाहिए। ये छोटी-छोटी अच्छी आदतें मिलकर ही बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। बच्चों, ये धरती केवल हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो भविष्य सुरक्षित और सुंदर होगा। यही संदेश देने के लिए, प्रकृति के प्रति हमें जागरूक करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालू और धूल भरी आंधी से मुकाबला करने का दिवस घोषित किया गया। तब से प्रतिवर्ष 12 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, आइए आज इस दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जल और मिट्टी का संरक्षण करेंगे तथा अपने पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ऐसा करके धूल भरी आंधियों का प्रभाव घटाएंगे और धरती को हरा भरा बनाएंगे। बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम आपको बहुत कठिन लगा हो, लेकिन आपने सोचा हो, मैं कोशिश करूंगा और मैं जरूर सफल हो जाऊंगा? यही भावना आशा कहलाती है। जी हाँ बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी है। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम निराश नहीं होते, बल्कि विश्वास के साथ मेहनत करते हैं, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। इसी संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 12 जुलाई, जी हाँ बच्चों, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 में घोषित किया, ताकि दुनिया में शांति, सहयोग, दया और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। बच्चों, आशा का मतलब है हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कठिन समय में भी हिम्मत ना हारना, स्वयं पर विश्वास रखना और दूसरों की मदद करना और उन्हें भी हिम्मत देना। याद रखिए बच्चों, एक छोटा सा शब्द, एक मुस्कान और किसी की मदद करना किसी के मन में नई आशा जगा सकता है। बच्चों, सोचिए, यदि किसान बीज बोते समय ये विश्वास न रखे कि फसल उगेगी, यदि विद्यार्थी ये विश्वास न रखे कि वह परीक्षा में सफल होगा, यदि खिलाड़ी ये सोच ले कि वह कभी जीत ही नहीं सकता, तो क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आशा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आशा हमें गिरकर फिर उठना सिखाती है, कठिनाइयों में मुस्कुराना सिखाती है और ये विश्वास दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। इसी भावना को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हर वर्ष आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि परिस्थिति

स्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे मन में आशा, साहस और मेहनत का संकल्प है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, आशा मत छोड़िए, क्योंकि हर नया सवेरा एक नया अवसर लेकर आता है। मन में विश्वास, हृदय में आशा और कर्म में निष्ठा हो तो सफलता निश्चित है। इसी के साथ आइए बच्चों, आपको लिए चलते हैं एक बार फिर गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो अभी हमारे बच्चों ने सुना ये गीत और अब वक्त हो चला है आपको एक कहानी सुनाने का। बच्चों, एक गांव में अक्सर रात को बिजली चली जाती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सभी चिंतित थे। उसी गांव में एक छोटा सा दीपक रखा था। उसने सोचा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, क्या मेरे जलने से इतना घना अंधेरा दूर हो पाएगा? तभी पास रखी मोमबत्ती मुस्कुराई और बोली, तुम ये मत सोचो कि तुम पूरे गांव को रोशन कर पाओगे या नहीं, तुम बस अपना काम करो। जहां तक तुम्हारा प्रकाश पहुंचेगा, वहां तक अंधेरा अपने आप हट जाएगा। दीपक जल उठा। उसके प्रकाश से एक व्यक्ति को रास्ता दिखाई दिया। उसने दूसरे दीपक जलाए, फिर तीसरे, चौथे, और देखते ही देखते पूरे गांव में उजाला फैल गया। बच्चों, ये दीपक हमें सिखाता है कि कभी भी अपने आप को छोटा या कमजोर मत समझो। आशा की एक छोटी सी किरण भी बड़े से बड़े अंधकार को चुनौती दे सकती है। बच्चों, आशा का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ पहला कदम उठाना है। आप में से हर बच्चा एक दीपक है। अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से आप अपने परिवार, विद्यालय और देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त हो चला है बच्चों आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपनी सीमा आंटी को फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब उन्नति करिए। नमस्कार।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फुलवारी एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी आरजे कनिका। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनने में जितनी छोटी लगती है, सोचने पर उतनी ही गहरी हो जाती है। वो गलतियां सबसे बड़ी होती है जिनमें गलत होने का एहसास ही ना हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे विश्वास के साथ कोई फैसला लिया हो, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि काश उस समय किसी ने आईना दिखाया होता, या फिर कभी किसी अपने की बात, उसकी भावनाएं या उसकी कोशिशों को आपने नजरअंदाज कर दिया हो और उस समय लगा हो कि आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन असली चुनौती गलती करना नहीं बल्कि उसे पहचानना है, क्योंकि जिस गलती का हमें एहसास हो जाता है उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन जो गलती हमें गलती ही नहीं लगती वही धीरे धीरे हमारी आदत, हमारी सोच और कभी कभी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर अपनी बात कहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले को सुनना भूल जाते हैं। कभी हम किसी को जज कर लेते हैं, कभी बिना पूरी बात जाने राय बना लेते हैं, और कभी अपने अहंकार को आत्मसम्मान का नाम दे देते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि इन सब में हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन सीख वही पाता है जो अपने आप से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। कभी कभी खुद से यह पूछना भी जरूरी है कि क्या मैं सच में सही हूँ, क्या मेरी बात से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, क्या मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। ये सवाल हमें छोटा नहीं बनाते बल्कि पहले से बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, माफी मांगना कमजोरी नहीं है और अपनी गलती स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है वही अपनी सबसे बड़ी ताकत भी पहचान लेता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको किसी मोड़ पर खड़ा करे तो सिर्फ यह मत सोचिए कि सामने वाला गलत है या सही, एक बार खुद पर भी नजर डालिए, क्योंकि कई बार जवाब बाहर नहीं हमारे भीतर छुपा होता है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा संदेश बस इतना है कि गलतियां करने से मत डरिए, लेकिन उन्हें सही मानकर जीने से जरूर बचिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हमें अपनी गलती का एहसास होता है।

दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही एक तरफ बढ़ता तापमान परेशान करने लगता है, तो दूसरी तरफ हर महीने आने वाला बिजली का भारी भरकम बिल भी लोगों के बजट का गणित बिगाड़ देता है। एयर कंडीशनर यानी एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल इन दिनों काफी बढ़ जाता है। आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ही बिजली का बिल बढ़ रहा है, लेकिन तकनीकी जानकारों का कहना है कि केवल अधिक उपयोग ही नहीं बल्कि इन उपकरणों को चलाने का हमारा तरीका भी बिजली की खपत को काफी हद तक प्रभावित करता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदतों में बदलाव कर लें तो बिजली के भारी भरकम बिल से काफी राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि एसी, फ्रिज और कूलर का इस्तेमाल किस तरह किया जाए ताकि ठंडक भी मिले और बिजली की बचत भी हो। सबसे पहले बात करते हैं एयर कंडीशनर यानी एसी की। गर्मी से राहत पाने के लिए सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन इसकी गलत सेटिंग जेब पर भारी पड़ सकती है। अक्सर लोग कमरा जल्दी ठंडा करने के लिए एसी का तापमान 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं। इससे कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और बिजली की खपत तेजी से बढ़ती है। विशेषज्ञों के अनुसार एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाना सबसे आदर्श और किफायती माना जाता है। एसी चलाते समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद रखें, साथ ही हल्की स्पीड पर सीलिंग फैन भी चालू रखें। इससे ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है और कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके अलावा एसी के एयर फिल्टर की नियमित सफाई भी बेहद जरूरी है। फिल्टर में धूल जमा होने से हवा का प्रवाह प्रभावित होता है और मशीन को कमरे को ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं फ्रिज की। फ्रिज घर का ऐसा उपकरण है जो 2400 घंटों तक चलता रहता है, इसलिए इसकी छोटी सी लापरवाही भी बिजली के बिल को बढ़ा सकती है। कोशिश करें कि फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें और उसे ज्यादा देर तक खुला ना छोड़ें। ऐसा करने से अंदर की ठंडक बाहर निकल जाती है और कंप्रेसर को दोबारा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी गैस से उतरा हुआ या गर्म खाना सीधे फ्रिज में ना रखें। गर्म भोजन फ्रिज के अंदर का तापमान बढ़ा देता है, जिससे उसे दोबारा ठंडा करने में अधिक बिजली खर्च होती है। हमेशा खाने को सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें और उसके बाद ही फ्रिज में रखें। साथ ही फ्रिज के थर्मोस्टेट को हमेशा मीडियम सेटिंग पर रखना बेहतर माना जाता है। अब बात कूलर की। कम खर्च में बेहतरीन ठंडक देने वाला कूलर तभी सही तरीके से काम करता है जब उसका उपयोग सही तकनीक से किया जाए। कूलर को कभी भी पूरी तरह बंद कमरे में ना चलाएं। इसे हमेशा खिड़की या दरवाजे के पास ऐसी जगह रखें जहां से बाहर की ताजी हवा अंदर आ सके। कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होने पर ही कूलर बेहतर कूलिंग देता है। इसके अलावा कूलर की घास या कूलिंग पैड्स पर धूल और खारे पानी की परत जम जाने से हवा का प्रवाह कम हो जाता है, इसलिए पूरे सीजन के दौरान इसकी नियमित सफाई करें और जरूरत पड़ने पर कूलिंग पैड्स बदल दें। साथ ही पानी के पंप और टंकी की भी समय समय पर जांच करते रहें ताकि मोटर पर अतिरिक्त लोड ना पड़े और कूलर बेहतर ढंग से काम करता रहे। तो दोस्तों,

बिजली की बचत केवल कम इस्तेमाल करने से नहीं बल्कि सही इस्तेमाल करने से भी होती है। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें न केवल आपके बिजली के बिल को कम कर सकती हैं बल्कि आपके उपकरणों की कार्यक्षमता और उम्र भी बढ़ा सकती हैं।

दोस्तों, आज के समय में लैपटॉप हमारी पढ़ाई, ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लास, मीटिंग्स और मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। घर हो, ऑफिस, कॉलेज या फिर कोई कैफे, हर जगह लैपटॉप का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद स्क्रीन पर उंगलियों के निशान, धूल और ऑयली दाग जमा होना बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसे में कई लोग स्क्रीन साफ करते समय ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे डिस्प्ले पर स्क्रैच आ सकते हैं या उसकी सुरक्षा कोटिंग खराब हो सकती है। खासकर टिश्यू पेपर, घरेलू क्लीनर या सीधे स्क्रीन पर स्प्रे का इस्तेमाल नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि लैपटॉप स्क्रीन को सुरक्षित तरीके से साफ करना बेहद आसान है और इसके लिए किसी महंगे प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं होती। अगर एक आसान नियम याद रखना हो तो बस इतना याद रखें कि

डिस्प्ले पर स्क्रैच आ सकते हैं या उसकी सुरक्षा कोटिंग खराब हो सकती है। खासकर टिश्यू पेपर, घरेलू क्लीनर या सीधे स्क्रीन पर स्प्रे का इस्तेमाल नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि लैपटॉप स्क्रीन को सुरक्षित तरीके से साफ करना बेहद आसान है और इसके लिए किसी महंगे प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं होती। अगर एक आसान नियम याद रखना हो तो बस इतना याद रखें कि लैपटॉप बंद करें, पहले धूल हटाएं, हल्के हाथ से साफ करें और स्क्रीन को पूरी तरह सूखने दें। सबसे पहले लैपटॉप को बंद करें और चार्जर को निकाल दें। स्क्रीन बंद होने पर गंदगी और दाग आसानी से दिखाई देते हैं और डिवाइस भी सुरक्षित रहता है। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले लैपटॉप को बंद करें और चार्जर निकाल दें। स्क्रीन बंद होने पर गंदगी और दाग आसानी से दिखाई देते हैं और डिवाइस भी सुरक्षित रहता है। इसके बाद एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। हल्के गोलाकार यानी राउंड मूवमेंट में धीरे धीरे स्क्रीन साफ करें। इससे धूल और फिंगरप्रिंट आसानी से हट जाते हैं। ध्यान रखें कि टिश्यू पेपर, नैपकिन, रफ कपड़ा या पुरानी टी शर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये देखने में भले ही मुलायम लगे लेकिन समय के साथ स्क्रीन पर छोटे छोटे स्क्रैच छोड़ सकते हैं। अगर स्क्रीन पर जिद्दी दाग हो तो माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का सा डिस्टिल्ड वाटर से नम करें। कपड़ा केवल थोड़ा गीला होना चाहिए, उससे पानी टपकना नहीं चाहिए। पानी या किसी भी क्लीनिंग लिक्विड को सीधे स्क्रीन पर कभी स्प्रे ना करें। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के लिए बने विशेष स्क्रीन क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात उन गलतियों की जिन्हें स्क्रीन साफ करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती है हार्श केमिकल का इस्तेमाल। कई लोग ग्लास क्लीनर, ब्लीच, एसीटोन या ज्यादा अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग कर लेते हैं। ये आधुनिक लैपटॉप स्क्रीन की एंटी ग्लेयर और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी गलती है स्क्रीन को ज्यादा दबाव डालकर साफ करना। लैपटॉप की स्क्रीन टीवी की तुलना में अधिक पतली और नाजुक होती है, इसलिए ज्यादा जोर लगाने से डिस्प्ले खराब हो सकता है। तीसरी बात, स्क्रीन के पास खाना खाने से बचें। खाने के दौरान तेल की छोटी छोटी बूंदें और खाने के कण स्क्रीन पर चिपक जाते हैं, जिससे गंदगी जल्दी जमा होने लगती है। अब सवाल यह है कि लैपटॉप स्क्रीन को कितनी बार साफ करना चाहिए। अगर आप रोजाना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो हर कुछ दिनों में हल्की सफाई काफी होती है। वहीं जो लोग बाहर काम करते हैं, ज्यादा यात्रा करते हैं या लंबे समय तक लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सप्ताह में एक बार स्क्रीन जरूर साफ करनी चाहिए। साथ ही लैपटॉप इस्तेमाल करने से पहले हाथ साफ रखने से फिंगरप्रिंट और ऑयली निशान भी कम पड़ते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए किसी महंगे गैजेट या वायरल हैक की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक माइक्रोफाइबर कपड़ा, हल्के हाथों से सफाई और हार्श केमिकल्स से दूरी आपकी स्क्रीन को लंबे समय तक साफ, सुरक्षित और बेहतर बनाए रख सकती है।

कभी सोचा है कि अगर जीवन में उम्मीद ही ना हो तो सपनों का क्या होगा? मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत कहाँ से आएगी? और मुश्किल रास्तों पर चलने की ताकत कौन देगा? कहा भी गया है कि जहाँ उम्मीद होती है वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और इसी उम्मीद, इसी सकारात्मक सोच और इसी हौसले का जश्न मनाने के लिए हर साल

12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ होप। दोस्तों, आशा सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि वो ताकत है जो गिरकर फिर से उठना सिखाती है। जब सब कुछ मुश्किल लगता है तब यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाती है। साथ ही यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एक दूसरे का सहारा बनने का संदेश भी देता है। आज दुनिया भर में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाएं और कई संगठन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां लोग अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करते हैं और दूसरों को सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आपने भी शायद अपने जीवन में ऐसा समय कभी देखा होगा जब लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर किसी अपने के एक शब्द, किसी शिक्षक की सलाह, परिवार के साथ या खुद पर भरोसे ने आपको दोबारा खड़ा कर दिया हो। वही तो है आशा की असली ताकत। अगर हम इस दिन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं। किसी उदास दोस्त का हाल पूछ लीजिए, किसी को प्रोत्साहित करने वाला एक संदेश भेज दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए या फिर अपनी ऐसी कहानी साझा कीजिए जिससे किसी और को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। याद रखिए, कभी कभी हमारे दो मीठे शब्द किसी के जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनेंगे, क्योंकि उम्मीद वो रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है दोस्तों। तो दोस्तों, बी होपफुल, बी चीयरफुल और इसी के साथ दीजिए आप मुझे इजाजत, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कनिका को नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है।

0: विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हांड्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:28 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसके अंतर्गत चर्चा होगी मक्का की उन्नत उत्पादन तकनीक पर। साथ में आप सुनेंगे भेंटवार्ता अरहर की उन्नत खेती। सुनीता वर्मा कृषि।

पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत अकबरपुर। जानकारी दी जाएगी ज्वार की उत्पादन तकनीक पर। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 8:15 पर। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। तत्पश्चात रात 9 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 9:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

गीत को गाया था अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। बोल लिखे थे संतोष आनंद ने, संगीत था आनंद मिलिंद का। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगा हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया, कहा सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनसेवा में समर्पित अधिकारी और कर्मचारी सुशासन का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होता है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है और प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कर्मचारी हित में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का भी पारंपरिक राजस्थानी लोक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पिछले 12 साल से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से नियमित विमान सेवाओं का संचालन होना समूचे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूं वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: गौरतलब है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लोकार्पण किया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नए न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक जिम्मेदारियों से ही न्याय की मूल भावना साकार होती है और राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
0: समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा तथा पंजाब न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

0: जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा में रखे गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाकर आम जन से भी हरित राजस्थान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पीआईबी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से यह भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रूपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रूपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी पत्र का भी खंडन किया है। ब्यूरो ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने, किसी भी प्रकार का पैसा स्थानांतरित नहीं करने और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चलने वाली ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं ली गयी।
1: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूबने से आज 3 सगे भाई बहनों सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार ये बच्चे जिले के धम्बोला क्षेत्र के बड़ी गांव के रहने वाले थे और एनिकट में सुबह नहाने गए थे। इस दौरान अधिक गहराई में जाने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 2 बच्चों को आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। हादसा स्थल के पास मंदिर होने के कारण बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पाली जिले में वस्त्रों के पैकिंग बैग की कई यूनिट इन दिनों स्थापित हुई है। इनमें अधिकतर ने कुटीर उद्योग के तौर पर पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में 20,000 से अधिक महिलाएं घरों पर ही पैकिंग बैग तैयार कर वस्त्र निर्माता इकाइयों को भेज रही है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: विभिन्न वस्त्रों के पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: सरहदी जिले श्रीगंगानगर में महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता देने और भेदभाव तथा उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आज सेमिनार आयोजित की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई न्यायकर्मी मौजूद रहे। सेमिनार में न्यायिक कार्यों के दौरान और फैसलों में महिला सम्मान भाषा के उपयोग और कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीती 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं फलौदी और जैसलमेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश

0: जिलों में बरसात की गतिविधियां थमने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। वहीं जैसलमेर में आज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर मानसूनी बादल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बरसात की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मानसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कोटा का 5वां दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान PhD के 2 शोधार्थियों सहित 203 विद्यार्थियों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाले बने। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आयोजित सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर वन विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराने की अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉटेज वार्ड का भूमि पूजन किया और करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित PG हॉस्टल्स का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आम सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का हाईवे है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 75% से 80% काम पूरा हो गया है, शेष काम भी तेजी से प्रगति पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और भारत माला जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कोटा जिले को प्रमाण पत्र और 9,00,000 रुपए की राशि की घोषणा कर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोटा 12 झालावाड़ न्यायिक क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की पहली त्रैमासिक वर्कशॉप कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का उद्घाटन किया। श्री भाटी ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जजों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने को भी कहा। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 UCC के प्रारूप पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला परिषद सभागार कोटा में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने

संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा विधिक स्पष्टता जैसे विषय पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव सियाम ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, JVVNL और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को

0: मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, JVVNL और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश प्रदान किए। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जन सेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण का ने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री कानून व्यवस्था ने बत्ती सरल साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावन का ने बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलों ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रहे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथोनी और सर्दी हल्का माय दिन रो तापमान बढ़ियो। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि जनसेवा में समर्पित अहलकार और कार्मिक सुशासन रो मूल आधार है। वना कहो कि जन कल्याणकारी योजनावा और नीतियां ने संवेदनशीलता साफ गोई और भगत सर धरातल माथे उतारण हुए सुशासन स्थापित होवे है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों का न्यू व्यास सम्मान जलसा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि शासन सचिवालय प्रदेश री 8 करोड़ जनता री आशावा और अपेक्षावा रो केंद्र है और हर कार्मिक गुड गवर्नेंस री धुरी और विकसित राजस्थान 2047 रो महत्व सारथी है। मुख्यमंत्री कहो कि हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण का नी ऐतिहासिक कदम उठाया है और कर्मचारियों रा हित में प्रतिबद्धता रे साथ काम करिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि केंद्र सरकार देश रा न्याय बंदोबस्त ने बत्ती सरल साफ गोई तकनीक पूर्ण और नागरिक केंद्रित बनावन सारू बरोबर काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नुआ अदालत परिसर टावर ऑफ जस्टिस रा उद्घाटन मौके वना कहो कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिकारी संवैधानिक जिम्मेदारियों हुई न्याय री मूल भावना साकार हुए है और राष्ट्र प्रगति रा पथ माथे आगे बढ़े है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
1: जलसा में सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा और पंजाब री अदालता रा न्यायाधीश और न्यायिक अहलकार मौजूद रिया। जोधपुर हवाई डारा नुआ टर्मिनल आज बरोबर हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत यात्रियों ने टिकट और स्वागत किट देर वारो स्वागत करियो। इस दौरान बेंगलुरु पहली फ्लाइट रा यात्रियों रो रीत मुजब राजस्थानी लोक संस्कृति रे साथ स्वागत करीजियो। मीडिया साथ है बतलमाय श्री शेखावत कहो कि नुआ टर्मिनल रे शुरू होवणु लाडला 12 सालों चादरिया इंतजार आज पूरो भी हो। वना कहो कि 8 नियमित विमान सेवावां रो संचालन वेणो आखा मारवाड़ सारू ऐतिहासिक कामयाबी है।
3: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
1: ध्यान जोगे के जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने करियो हो। 480 करोड़ रुपया की लागत हो 37 एकड़ में बनिया ई टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश दरवाजा है और जातिया ने सीधा हवाई जहाज तई पुगावन सारू

0: कई आधुनिक सुविधा विकसित करी जी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो है कि जलवायु बदलाव घनी चिंता रो संकेत है। इस संकट को निपटन सारू केंद्र सरकार कई पहल करी है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में बोलता श्री चौहान कहो कि आखी दुनिया जलवायु बदलाव और धरती रो तापमान बढ़ने लेर चिंता में है। वना कहो कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा बूता में महत्व बढ़वार भी है। श्री चौहान एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ सरी की पहला रो जिक्र करता कहो कि भारत साल 2070 ताई शून्य कार्बन उत्सर्जन रो लगस तय करियो है।
1: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: मानसून रे आवण रे साथ ही प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान रे तहत कई जागरूकता कार्यक्रम रखा जावे। एक कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज कोटा में व्या वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करी। ई मौके वना पौधा लगार लोगों हरित राजस्थान सारू सक्रिय भागीदारी निभावण री अर्ज करी। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही उन फर्जी तस्वीरों खंडन करियो है जिनमें दावो करी जो है कि इथेनॉल मिला पेट्रोलों वाहन रा ईंधन टैंक में समस्या वह सके है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई ई दावा ने झूठो बतावता कहो है कि तेल विपणन कंपनियां कानियों सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो रा तहत मानका मुजब है। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय रा हवालाओं भरोसो दियो है कि भारत में सप्लाई किया जाने वाला इथेनॉल मिला पेट्रोल में ऊंची गुणवत्ता मानकों का पालन करीजो है और उपभोक्ताओं ने मुहैया कराया जाने पहला इनरो गहराई रे साथ परीक्षण करियो जावे है। पीआईबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत 350 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करण माथे 500,000 रुपया रो कर्ज मंजूर होने रो दावो करण वालो एक फर्जी कागज बतायो है। पीआईबी लोगों इन तरह रा फर्जी संदेशों सावचेत रहवान और किणी तरह रा रुपया नी भेजन और आप री खुद री बैंक री जानकारी साझा नी करन री अर्ज करी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानियों आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चालन वाली आ भर्ती परीक्षा कुल 9,651 औदा सारू वह रही है। इस सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1,232 परीक्षा केंद्र बनाई गया है। आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा मान ली रही जी।
2: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूब जावणु आज 3 सगा भाई बहना समेत 4 टाबना री मौत वेगी। पुलिस बतायो के हादसा रा शिकार ए टाबर जिला रा धंबोला हलका रा बड़ी गांव रा रहवासी हा और एनिकट में सवारा नावण गया हा। ई दौरान घनी गहराई में जावणु ओ हादसो भी हो। हादसा रे दौरान दो टाबरा ने आरे सारे रा लोगा भगत रहता बचा लिया। पाली जिला में कपड़ा रा पैकिंग बैगरी के यूनिट आदिना स्थापित भी है। इन में घनकरा कुटीर उद्योग रा तौर माते पिछाण बनाई है। मारा खबर ने इस बतायो कि जिला में 20,032 महिलावा घर माते पैकिंग बैग तैयार करने कपड़ा बनावन वाली इकाया ने भेज रही है और आत्मनिर्भरता कानी आगे बढ़ रही है।
3: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है।

0: है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नो गर्मी रो असर एक और फिर दिखन लग्यो है। सरदी और आथोणी जिला में दिन रो तापमान बढ़न लग्यो है। श्री गंगानगर में लाडला 24 घंटा रे दौरान बत्ती रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करीजो। वठी फलोदी और जैसलमेर में दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आर सारे रिकॉर्ड भी हो। घणकरा जिला में बिरखारी गतिविधियां थम जावणो कास्तकारा चेहरा माथे उदासी देखी जावे। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चालण जिंदगी माथे असर पड़ियो। ई बीचे मौसम महकमो कयो है कि सेटेलाइट इमेज में राजस्थान रे ऊपर मानसूनी बादल अजय नजर नहीं आ रिया है। महकमा मुजब आवता 3-4 दिन बिरखारी गतिविधियां में कमी बनी रहण री आस है। सरदी जिला रा श्री गंगानगर में महिलाओं ने काम री ठोड़ बरोबरी देवण और भेदभाव उत्पीड़न माथे रोकथाम सारू आज सेमिनार भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार कार्यक्रम में शिरकत करी। ई दौरान कई न्यायिक कर्मी मौजूद रिया। सेमिनार में न्यायिक कामा रे दौरान और फैसला में महिला सम्मान भाषा काम में लेवण और काम री ठोड़ महिलाओं रा हक री जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिलो आज आपरो 32 स्थापना दिवस मनावे। 3 दिन रा उत्सव रा आखिरी दिन आज भटने दुर्ग माए पूजा अर्चना रन फॉर हनुमानगढ़ भी हो। ई मौके न्यारी न्यारी होडा भी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान रहते पौधा रोपी जा। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कहो सरकार कर्मचारी कल्याण काने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो सरकार देश री न्याय व्यवस्था ने बत्ती सरल साफगोई और नागरिक केंद्रित बनावन कानी बरोबर काम कर रही है। सरकार इथेनॉल मिलिया पेट्रोलों ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है। और प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथोणी और सरदी हल्का में दिन रो तापमान बढ़ियो। इन साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाई को सुरेंद्र कुमार की घनी घनी राम राम। और देखो किसान भाइयों, आज अपन अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, पहले सबसे पहले मक्का की उन्नत उत्पादन तकनीकी क्या है। तो देखिए किसान बहन भाइयों, जैसा मक्का का नाम लेते ही हमें मोटा अनाज होता है उसकी हमारे दिमाग में आती है कि मक्का एक मोटा अनाज है, और इसका उत्पादन अपन अगर वैज्ञानिक तकनीकी से करें तो अधिक उत्पादन अपन ले सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो मक्का की किस्म है उनका चयन करते हैं, और इनमें संकर और संकुल किस्में होती हैं, उनका उपयोग अपन उत्पादन में कर सकते हैं। तो मक्का की खेती करने के लिए भाई अपन सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं और उसकी जांच करवाते हैं।

कि मक्का की जो प्रारंभिक अवस्था में जब खेती में पानी भर जाता है तो उस समय इसकी बढ़वार नहीं होती है, अतः उचित जल निकास वाली भाई जो भूमि है वो होनी चाहिए, जिससे मिट्टी का पीएच मान 6.5 से और 7.5 के मध्य में हो, वहाँ मक्का की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। और मक्का की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले खेत की जुताई करनी चाहिए, और कई किसान बहन भाई क्या है ग्रीष्मकालीन में भी जुताई कर देते हैं, उसके बाद में जब पहली सिंचाई हो उसके 15 दिनों तक हम मक्का की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीज उपचार के लिए, भाई मक्का की फसल में अपन बीज उपचार कर सकते हैं, संकर जो किस्म है, संकर जो बीज है उसमें कवकनाशों से उपचारित होता है और इसके अतिरिक्त उपचार की जरूरत नहीं होती है। संकुल जो किस्में होते हैं उनमें अनुपचारित बीजों को रोग एवं कीट के प्रबंध से अपन कवकनाशी व कीटनाशी से उपचारित करके बुआई करें तो उसका अपन बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपन देखिए फास्फोरस गोलक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भी उपयोग अपन करते हैं, जिसे PSB कहते हैं। इसके लिए 200 से 300 ग्राम गुड़ और 1.5 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर और उसको ठंडा करते हैं और उसमें 600 ग्राम दोनों जीवाणु कल्चर वाले अलग अलग घोल बनाकर और घोल को बीजों में डालकर और सही तरीके से धीमे हाथ से उनको मिला के और छाया में सुखाकर 12 घंटे सुखाकर उसको बुआई कर सकते हैं। अब बीज दर की बात करते हैं कि मक्का की फसल में बीज दर की बात करते हैं अपन, तो बीज दर अपने को कितना किलो भाई किस किस्म के लिए अपने को चाहिए। अगर जल्दी पकने वाली और संकर और संकुल सामान्य गुणवत्ता वाली मक्का होती है उसमें अपन 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए लेते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी उसमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 60x20 सेंटीमीटर की रखते हैं। देर से पकने वाली जो किस्में होती हैं उनमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 60x25 सेंटीमीटर रखते हैं और बीज की मात्रा 20 से 25 किलो रखते हैं। फूली की जो मक्का होती है उसमें कतार से कतार की दूरी 60x20 सेंटीमीटर और बीज की मात्रा 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। मीठी मक्का होती है उसमें 60 से 20 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं और 5-6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं। और एक शिशु मक्का आती है उसमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 60x5 सेंटीमीटर रखते हैं और 20 से 25 किलोग्राम बीज लेते हैं। इस तरीके से मक्का की बुआई देखो अपन जून से प्रारंभ करके और जुलाई के मध्य सप्ताह तक अपन कर सकते हैं, बरसात जहाँ होती है उसके हिसाब से अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। और 40-50 मिली जहाँ बरसात हो जाती है वहाँ पे इसकी बुआई कर सकते हैं। खरपतवार जब मक्का की फसल की बुआई कर देंगे उसके बाद में अपने को जो खरपतवार नियंत्रण होता है उसके भी बहुत आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपन यांत्रिक यानी कि अपने खुरपी से कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि जो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण है वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि 0.5 किलोग्राम एट्राजीन और 1.5 किलोग्राम एलाक्लोर को 600 लीटर पानी में मिलाकर और अंकुरण से पूर्व ही अपन उसमें छिड़काव कर देते हैं और 25 से 30 दिनों की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई अपने को कर देते हैं। इससे क्या है कि खरपतवार उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरीके से अपन मक्का में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और इसमें अपन देखो मक्का में अंतर शस्य वर्तन की क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे मक्का में अपन उड़द मूंग चौला ग्वार या सोयाबीन की अंतर शस्य वर्तन जी क्रियाओं में फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसमें अपन ऐसा करते हैं मक्का की दो कतारों के बाद में उड़द व मूंग की दो कतारें और मक्का की एक कतार के बाद में ग्वार सोयाबीन या चौला की एक कतार बो के अपन कर सकते हैं। इस तरीके से अपन मक्का की खेती कर सकते हैं। और मक्का की फसल में भाई कटाई जब वो उसका भुट्टा बन जाए उस समय उसको अपन तोड़ के और काम में ले सकते हैं।

0: तरीके से अपन ने बात करी ये मक्का की फसल की, और अब किसान बहन भाई को अपन दिलवाते हैं एक जानकारी भेंट वार्ता कि अरहर की उन्नत खेती किस तरीके से करें। आपने को जानकारी दे रही है सुनीता वर्मा जी, कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति उमरेण से जो बातचीत करी वो बातचीत सुनवाते हैं किसान बहन भाई।
1: किसान भाइयों राम राम। देखो आज हमारे साथ हैं सुनीता वर्मा जी, आप कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत अकबरपुर पंचायत समिति उमरेण में कार्यरत हैं। आज इनसे जानेंगे राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में दलहन के उन्नत उत्पादन के बारे में। दलहन में जाकर बात करें अपन अरहर की, तो अच्छे रूप से अरहर की फसल के बारे में सुनीता जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को थोड़ा सा राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में बता दूं। ये दलहन में आत्मनिर्भर समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो आइए इसी राष्ट्रीय दलहन मिशन के में अरहर की फसल के बारे में सुनीता जी जानकारी देते हैं। नमस्कार जी।
2: नमस्कार किसान भाई।
1: देखो सुनीता जी, अपन बात करें अरहर की फसल के बारे में, तो अरहर अपने इस क्षेत्र में अलवर के आसपास में काफी बुआई की जाती है। तो अरहर की जब फसल की अपन बुआई करते हैं, उससे पहले भूमि की तैयारी में क्या कुछ विशेष सावधानी अपने किसान भाई रखते
2: हैं? भूमि की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगी कि भूमि उपचार किसानों को करना चाहिए। इसके लिए जैसे ट्राइकोडर्मा नाम की दवाई आती है जो कि एक जैविक फफूंदनाशी है, तो 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको, जैसे 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 से 150 किलो गोबर के अंदर अच्छे से मिक्स करके उसमें अच्छे से नमी मिला करके उसको छायादार स्थान में इकट्ठा करके उसमें थोड़ा गुड़ का घोल बना करके भी डाल दें और फिर उसको 7 से 10 दिन के लिए रख दें, तो उसमें क्या है उन जो ट्राइकोडर्मा है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में उसको भूमि उपचार के लिए काम में लेना चाहिए, जिससे जो भूमिगत बीमारी है फफूंद जनित तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है
1: जी। इसमें अगर बात करें तो बीज दर की और बीज उपचार के बारे में अपने किसान भाइयों को थोड़ी और जानकारी दें।
2: अरहर की फसल की अगर हम बीज दर की बात करें तो इसमें जैसे 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उपयुक्त रहता है बीज, जो कि बुआई मशीन के द्वारा किया जाता है उसमें पर्याप्त रहता है। दूसरा, इसके अगर हम किस्मों की बात करें,
1: किस्मों से पहले आप किसान भाइयों को थोड़ा बीजोपचार के बारे में बताएं। दलहनी वाली जो फसल है इसमें राइजोबियम का बहुत विशेष महत्व होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी।
2: बीजोपचार की अगर हम बात करें तो जैसे एक इसमें होता है FIR यानी फफूंदनाशी से उपचारित करना है, फिर इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी से उपचारित करना है, और फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके अच्छे से सुखा करके फिर उसके बाद में इसको बीज को बुआई के लिए काम में लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनसे और जो कीटों से नुकसान है उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूंगी कि आप जो है बीज को उपचारित करके ही बुआई के काम में ले।
1: राइजोबियम जो आप बता रहे हैं उसका क्या इसमें दलहनी में महत्व?
2: ये दलहनी फसलें जो होती है उनमें राइजोबियम जैसे स्थिरीकरण के लिए गांठे होती है तो वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है, जिससे दूसरे आने वाली दूसरी फसल के काम में भी आती है। इसलिए तो दलहनी फसलों को वैसे राइजोबियम कल्चर से ही उपचारित किया जाता है, तो इसलिए भी जरूरी है। तो ये भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, इसलिए किसान भाई एक साल जैसे दलहनी फसल उसके बाद में जैसे कोई भी अनाज वाली फसल उगाए ताकि एक उचित फसल चक्र खेत के लिए उपयुक्त रहता है,
1: भूमि की दशा भी ठीक रहे, उत्पादकता भी अच्छी रहे।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो देखो सुनीता जी, बात करें अगर किस्मों की, किस्मों का उत्पादन में बहुत विशेष महत्व रहता है, तो किस्में कौन कौन सी उपयुक्त हैं अरहर की?
2: अरहर की हम किस्मों की अगर बात करें तो जैसे इसमें अरहर की जैसे खरीफ में बुआई की बात करें हम इस टाइम, तो जैसे इसमें अगेती भी है, कुछ पछेती भी है, कुछ समय पर बुआई करने योग्य किस्में हैं। तो जैसे इसमें किस्में हैं, एक पूसा अरहर है, पूसा अरहर 16, एक AL 882 है, एक AL 201 है, एक पूसा 992 है। इसके अलावा जैसे एक नरेंद्र अरहर है, एक निर्मल दुर्गा, ये बहुत ही अच्छी वेराइटियाँ हैं जो किसान भाई इनका काम में ले सकते हैं बुआई के लिए।
1: और इसमें जैसे निकाई गुड़ाई और सिंचाई कितनी और कब कैसे कैसे आवश्यक है?
2: निराई गुड़ाई की अगर हम बात करें, जैसे खरीफ वाली फसलों में मुख्यतः देखा जाता है कि खरपतवारों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात के कारण नमी पर्याप्त मात्रा में होती है, तो इस वजह से अन्न न चाहते हुए भी अनुवांछित जो खरपतवार है पौधे हैं वो उग आते हैं,

0: तो वो फसल की पैदावार पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए हमें फसल के अलावा जो भी, जैसे अरहर की फसल है उसके अलावा जो भी पौधे हैं उनको उखाड़ना चाहिए। तो मानव श्रम के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा हम इसका निराई गुड़ाई करवाएं, जब आवश्यकता पड़ने पर दूसरी निराई गुड़ाई भी करवाएं, जिससे क्या है कि वायु का जो संचार है वो अच्छा रहता है और फसल का जो पैदावार है उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे अगर ज़्यादा खरपतवारों का प्रकोप हो तो इसमें खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पेंडीमिथालिन नाम की एक दवा आती है उसका स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके मानव श्रम द्वारा ही खरपतवारों को निकलवाएं और जिससे जो फसल की जैविक स्थिति है वो बनी रहती है।
1: जी, तो ये अरहर की फसल है, इस समय बरसात की मात्रा भी रहती है और भाई इसमें कीट पतंग और बीमारियों का बड़ा प्रकोप हो जाता है जैसे प्रतिकूल मौसम रहता है, तो इसमें कौन कौन से कीट ज़्यादा अरहर को प्रभावित करते हैं और कौन सी बीमारी लगने का अंदेशा रहता है?
0: बरसात की फसल होने के कारण जैसे इसमें हम, पहले मैं आपको इसमें जैसे सिंचाई के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जैसे अगर बारिश कम आए या देरी से आए तो इसमें जैसे फूल और फली बनते समय सिंचाई का ध्यान रखें, किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगी। साथ ही अगर जैसे आपने कहा कि इसमें कीट और बीमारियाँ, तो ये बरसात वाली फसल होने के कारण भी और वैसे भी जो भी फसल होती है उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप तो मुख्यतः देखने को मिलता ही है अगर हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखें तो। तो इसमें जैसे अगर हम कीटों की बात करें तो जैसे फली छेदक इल्ली होती है वो इसमें बहुत ही इसकी फली को खा करके, अंदर से दानों को खा कर नुकसान पहुँचा देती है। तो इसमें आपको अगर जैविक रूप से हम बताएं तो जैसे नीम ऑयल है उसका आप इसमें छिड़काव करके इस फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक प्रोफेनोफॉस नाम की दवाई आती है, अगर रासायनिक दवाइयों की हम बात करें तो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे अगर हम कीट की बात करें तो जैसे इसमें एक फली मक्खी भी होती है, एक फली का मतकुण होता है, तो ये जो कीट है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं अरहर की फसल की जो फलियाँ हैं उनको। तो किसान टाइम समय रहते इनका इलाज करे और फसल का अच्छे से ध्यान रखे। इसके अलावा अगर हम रोगों की बात करें तो इसमें जैसे कई बीमारियां लग जाती है, जैसे एक रोग देखने को मिलता है इसमें जैसे उकटा रोग से इसमें की पैदावार में बहुत ही ज्यादा, मतलब पैदावार बहुत ही कम हो जाती है। तो इसका
1: तो जो उकटा रोग जो आप बताए उसे क्या लक्षण आते हैं?
0: उकटा रोग में जैसे हम अगर बात करें तो जैसे इसमें पौधे की पत्तियां जो है उनको प्रभावित होती है और इसके साथ ही जैसे इसका पूरा पौधा है, जैसे इसका तना है, इसकी फलियां हैं, वो सब प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल, जैसा आपके नाम से महसूस हो रहा उकटा रोग है तो सूख जाता है पौधा, उखड़ जाता है।
0: हाँ जी बिल्कुल। तो इसके अगर हम उपचार की बात करें तो जैसे रोगरोधी किस्में इसमें अपनानी चाहिए। रोगरोधी किस्मों की हम बात करें तो जैसे शरद है, प्रगति है, एक LRG 30 है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसके साथ ही आप इसमें बीजोपचार करेंगे तो भी इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। ये बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलेगी अगर हम किसान भाई बीजोपचार करते हैं। साथ ही अगर मान लो इसका प्रभाव हो जाता है तो उस पर केप्टन नाम की एक दवा आती है, वो 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसमें स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी अगर हम इसकी बीमारी की बात करें तो इसमें जैसे बांझपन विषाणु रोग होता है, ये एक वायरस के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पौधा है इसके वायरस के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि रोगरोधी किस्में जैसे पूसा 9 है, PCL 151 है, तो ये किस्में लगानी चाहिए। इसके साथ ही जैसे बीजोपचार है, फसल चक्र है, समय पर निराई गुड़ाई है, और दूसरी बात ये है कि कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके आप इसके जो वायरस को जो ट्रांसमिट करता है उसको नष्ट कर सकते हैं और फसल को सुरक्षित रख सकते हैं
1: जी।
0: साथ ही अगर हम इसकी बीमारी की बात करें तो एक इसमें फाइटोप्थेरा झुलसा रोग भी लगता है। उसमें क्या होता है कि जो इसका इससे प्रभावित जो पौधा है वो पीला होकर सूख जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए जो है मेटालेक्जिल नाम की दवा आती है, वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके या फिर बीज के अंदर उपचारित करके आप इसमें जो है बचाया सकते हो फसल को। इसके साथ ही जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी बीमारी है या कोई भी कीट है तो उसको जैसे ही प्रभावित खेत में जैसे ही एक दो पौधे दिखे तो उनको खाड़ करके और उनको अन्य जगह ले जा करके उनको जला देना चाहिए।
1: या बिल्कुल, ये सावधानी किसान भाइयों को जरूर रखनी।

0: फसल हो जिसमें रोगग्रस्त कोई अगर पेड़ नजर आए तो उखाड़ के उनको दबा देना चाहिए या जला देना।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके साथ साथ मुख्य रूप से इस बात करें सामान्य तौर पर इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है जो अपने किसान भाई?
1: अरहर की फसल की पैदावार की अगर हम जहाँ तक बात करें तो इसमें जैसे सामान्य परिस्थितियों में किसान जैसे जो उसके पास अवेलेबल संसाधन है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आसानी से प्राप्त कर सकता है।
0: जी, क्या कुछ विशेष संदेश अपने किसान भाइयों को देना चाहिए कि जिसे राष्ट्रीय दलहन मिशन में वो भी अपनी अरहर का उत्पादन लेके सहभागिता निभा सके?
1: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जैसे दलहनी फसल है अरहर बहुत ही अच्छी है जो शरीर के लिए भी बहुत ही गुणकारी है और दलहन मिसल में भी जैसे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि बार बार एक ही फसल लेने के बजाय फसलों को अदल बदल करके बोना चाहिए, उनके स्थान पे जैसे एक दूसरे सीजन में बदल करके जैसे दलहन वाली फसल को लेना चाहिए। अरहर बहुत ही अच्छी फसल है जो कि एक पौष्टिक भी है दलहन, तो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा दलहन का उत्पादन करें और उसमें पैदावार को बढ़ोतरी करें।
0: जी जी सुनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जानकारी दी उसके लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ तो देखो किसान बहन भाइयों, ये तो सुनी अरहर की उत्पादन तकनीकी के बारे में सुनीता वर्मा जी ने दी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी और आशा करते हैं कि किसान बहन भाई जो जानकारी दी है उसको ध्यान में रख के और अरहर की खेती करने में अपना लाभ प्राप्त करेंगे। आगे किसान बहनों का करवाते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं एक राजस्थानी लोकगीत। सीमा मिश्रा हुआ साथियों का गायबा, तो सुनिए किसान बहन भाई ये लोकगीत।

हाँ तो किसान बहन भाइयों, ये तो सुना अपने राजस्थानी लोकगीत सीमा मिश्रा और उनके साथियों का गाया हुआ। और अब किसान बहन भाइयों को अपन जानकारी देंगे कि ज्वार है फसल का उत्पादन की उन्नत जो तकनीक है वो किस तरीके से अपन कर सकते हैं। किसान बहन भाइयों, जैसा कि अपन जानते हैं ज्वार की जो फसल है या ज्वार का दाना है, मोटे अनाजों में मक्का के बाद ज्वार का ही नाम आता है और ज्वार को मोटे अनाजों की श्रेणी में अपन मानते हैं। तो इसके लिए जलवायु और मृदा की जब अपन बात करते हैं तो ज्वार जो है गर्म जलवायु की फसल है, इसे विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में उगाया जा सकता है। इसके लिए 450 से 650 मिलीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको आसानी से उगाया जा सकता है और पानी की कमी को भी सहन कर सकती है ये, और पानी की अधिकता को भी सहन कर सकती है अन्य फसलों की अपेक्षा। ज्वार की जो फसल है उसके लिए अपन भूमि की जो होनी चाहिए वो किस तरह की भूमि होनी चाहिए, अपन इसको हल्की मिट्टी में भी उगा सकते हैं, अपेक्षाकृत ये भारी मिट्टी में अच्छी तरीके से अपनी पैदावार करती है। अब इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार से हैं, एक तो संकुल जो किस्में हैं CSV 15, CSV 17, CSV 20,

और CSV 22 और CSV 23, CSV 84 और प्रताप ज्वार 1430, ये तो इसकी संकुल किस्में हैं। जो संकर किस्में हैं CSH 14, CSH 16 और CSH 17 और CSH 27, और जो चारे की किस्में हैं वो हैं राजस्थानी चरी 2, राजस्थानी चरी 1 और प्रताप चरी 1080। तो ये इसकी किस्में होती हैं और इसकी किस्मों के अनुसार अपन खेत में अपना जो क्षेत्र है उसके अनुसार किस्मों का चयन करके और बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में खेत की तैयारी की बात करते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए, ज्वार की फसल के अंकुरण के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए और खेत को बारिश से पहले जून के महीने में जुताई कर लेनी चाहिए, और जब बरसात हो तब इस समय इसको अपन दो तरीके से बुआई कर सकते हैं, या तो छिड़क की बुआई कर दें या फिर अपन उराई मशीन के द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसमें अपन अंतरशस्य के रूप में मूंग की फसल, उड़द की फसल, मूंगफली की, लोबिया की ये उगाई कर सकते हैं। बीज और बुआई का जो समय है उसके बारे में अपन जानकारी देंगे किसान बहन भाई को कि इसकी बुआई अपन वर्षा होने के बाद में 2 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं और लगभग जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बुआई कर सकते हैं, और अगर कुछ देरी हो तो इसको अपन सितंबर के तीसरे हफ्ते से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते का समय भी उचित होता है। बीज दर इसका, लगभग इसके बीज दर की अपन बात करते हैं, तो अगर अपन बीज दर को जैसे बीज के लिए उत्पादन ले रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लेते हैं, और अगर अपन फसल को चराने के यानी चारे के लिए काम में ले रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की मात्रा होती है। अब बीज को अपन फफूंदी नाशक दवाओं से उपचारित करके 3 ग्राम जो थीरम नाम की दवा आती है, 75% वेटेबल दवा आती है, उससे उपचारित करके और 10 मिनट छाया में सुखा के पानी का छिड़काव करके उपचारित करते हैं और 10 मिनट पानी में सुखा के और उसकी बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ज्वार की उन्नत खेती कर सकते हैं। और अब किसान बहन भाई को दे दें मौसम की जानकारी। अपने अलवर जिले में अधिकतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। अब अपनी चौपाल का होता है समय समाप्त। ले किसान बहन भाई से गया, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फैज़ अनवर के बोल अनु मलिक का संगीत, गीत को गाया था कुमार सानू ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में, बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत हिमेश का।

0: पापा, शिमला कितना बड़ा है?
1: जितना बड़ा शिमला के ऊपर आसमान है।
0: आसमान में तारे कितने हैं?
1: जितने तुम्हारे सर पे बाल है।
0: मेरे सर पे बाल कितने हैं?
1: आसमान में जितने तारे हैं।
0: पापा, सूरज क्यों डूबता है?
1: क्योंकि उसको सोना होता है।
0: वो आसमान में क्यों नहीं सोता, चला क्यों जाता है?
1: इसलिए कि तुम सो

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमा

को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद

0: पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक

0: पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य

कृषि, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।

कार्यक्रम का अगला गाना आत्मा राम फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत विश्वेश्वर शर्मा का है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

विमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और विमल

वक्त की इस बेरहम मार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेरिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

0: अब दिन
1: न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदेर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदेर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थीं अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक बाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए।

और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की माँ। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डी सिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: गुरु तक तक तक तक तगन तगन गिन गिन रे, जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे,

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त, यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

हरी घास जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

0: भाई रे।
1: लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया विराज बहू का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

निर्मल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

0: रविंद्रनाथ टैगोर की कृति पर बिमल दा ने बनाई एक और मर्मस्पर्शी फिल्म काबुलीवाला।
1: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े।

दल ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन बिमल दा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदा, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चम्बे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदयर पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। बिमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। बिमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन यह फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को बिमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। बिमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सद...

0: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

इंडिया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

जरूर, पर भी आवाज दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

0: की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: ओरे माजी

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1.25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के

मंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता।